0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554 94 53
4: और 90 97 61 60 02।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710 3092 या 90765065।

देवताओं के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा। उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी का कारण पूछती हैं, किंतु वो चुप है। लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं, कहीं उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है। कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा। हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहाँ से दूर परदेश में है और तुम यहाँ कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा। मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह, आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूँ, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

बड़ी चतुराई से मंथरानी रानी कैकेयी के मन में कौशल्या तथा राम के प्रति ऐसे विष का बीज डाल दिया जिसके प्रभाव में सूर्य कुल के सुख समृद्धि हर्ष और उल्लास सबको एक बारगी सुखा डालने की क्षमता थी। सौत की ईर्ष्या की सैकड़ों उल्टी सीधी मन गणत कहानियां सुनाकर मंथरा ने कैकेयी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। कहती है, हे रानी, अपना मित्र या शत्रु तो पशु भी पहचान लेते हैं, परंतु तुम्हें तो अपने हित अहित की पहचान नहीं है। एक पखवाड़े से राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, और तुम्हें इसकी सूचना आज मुझसे मिली है। हे स्वामिनी, अब तुम्हारी स्थिति वही होगी जो दूध में पड़ी मक्खी की होती है। यदि पुत्र सहित राजा की चाकरी करोगी तब तो यहाँ रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। अपने अनिश्चित भविष्य की आशंका से रानी कैकेयी कांप जाती है। अब उन्हें ये भान होता है कि पिछले कई दिनों से उनकी दाहिनी आंख फड़कती रही है और रातों को बुरे बुरे सपने आते रहे हैं। वो मन में ठान लेती हैं कि मायके जाकर शेष जीवन बिता देंगी, किंतु जीते जी सौत की चाकरी नहीं करेंगी।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझिन 90.4 आमजेड पर।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 620-3139-564।
10: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
0: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62002434 03 62002434 03।

0: फोला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कुचायकोट के विधायक पप्पू पांडे के केस में अब CID करेगी जांच। लगभग दर्जन भर जगहों से शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज विधिक जागरूकता कार्यक्रम का भी कुचायकोट में हुआ आयोजन। कई अपराधियों पर अदालत के द्वारा जारी इस्तेहार का पुलिस ने किया तामिला। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिले में भू माफियाओं को संरक्षण तथा जबरन जमीन कब्जा करने के आरोप में कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे, उनके बड़े भाई सतीश पांडे और उनके CA आरोपी हैं, और इनको लेकर हाई प्रोफाइल मामला बना हुआ है। लगातार अदालत द्वारा इस पर सुनवाई की जा रही थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से इन सभी लोगों की गिरफ्तारी पर केस की कार्रवाई पूरी होने तक रोक लगा दिया गया था, जिसको लेकर पप्पू पांडे के समर्थकों में उत्साह और जोश भर गया था। परंतु दूसरे दिन ही इस मामले में एक नया मोड़ आ गया। अब सरकार के निर्देश पर CID इस मामले की जांच करेगी। बताया जा रहा है कि गोपालगंज पुलिस ने CID को यह मामला सौंपने के लिए सरकार से निवेदन किया था, और इसी मामले में सरकार ने अब यह केस CID को दे दिया है। CID अब पप्पू पांडे के इस मामले की जांच करेगी। जैसे ही यह जानकारी इलाके में लोगों को हुई तो पप्पू पांडे के समर्थकों में मायूसी देखी गई। इधर एक और हाई प्रोफाइल मामला, जिसमें अनंत सिंह को भी आरोपी बनाया गया है, उस मामले को भी अब गोपालगंज पुलिस ने CID को सौंप दिया है, और सरकार के निर्देश पर अब अनंत सिंह के मामले की भी जांच CID करेगी। CID की एंट्री के बाद ही दोनों ही हाई प्रोफाइल मामलों में लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक शराब तस्करों पर कार्रवाई की गई। उत्पाद पुलिस ने भी अलग अलग जगहों पर शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि जादोपुर थाना की पुलिस ने 91 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। यह कार्रवाई पुलिस ने बिशुनपुर सधुनी के कुट्टी के पास की। गुप्त सूचना के आधार पर यहां मोटरसाइकिल में बंधे हुए एक बोरे में 91 लीटर देशी शराब को बरामद किया गया। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार और शराब तस्कर आरोपी रंजन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कुचायकोट के शीतल बरदाह गांव के बहारन यादव का पुत्र है। इसकी गाड़ी और शराब को जब्त कर अब पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर उचका गांव थाना की पुलिस ने भी 115 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने महैचा बाजार के पास मुख्य सड़क पर वाहन जांच के दौरान मोटरसाइकिल को पकड़ा। इसमें बोरी में लाद कर रखी गई 115 लीटर से अधिक देशी शराब को जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया, परंतु तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। तस्कर गाड़ी और शराब छोड़कर फरार हो गया। कटिहार थाना की पुलिस ने भी 249 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को बरामद किया और एक शराब तस्कर को जब्त किया गया। इस दौरान एक ई रिक्शा को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यह कार्रवाई पंचदेवरी हाई स्कूल के पास की। गुप्त सूचना के आधार पर यहां वाहन जांच करते हुए ई रिक्शा को पकड़ा गया। इसके अंदर से 199 लीटर देशी शराब मिली एवं 50 लीटर से अधिक विदेशी शराब भी बरामद हुआ। कुल 249 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब मिली। इस कार्रवाई के दौरान राम इकबाल मदेशिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के चौरा खास थाना क्षेत्र के बनकटा बाजार निवासी सुखदेव शाह का पुत्र बताया जा रहा है। अब गिरफ्तार आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने फुलवरिया गांव के सरे में मुर्गी फार्म के पास छापेमारी करते हुए 12 कार्टून शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में की गई। पकड़ा गया आरोपी ललन यादव जादोपुर थाना क्षेत्र के सेमरा नवादा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके पास से हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी मिली है और 12 कार्टून बंटी बबली शराब को पुलिस ने जब्त किया है। अब इस आरोपी पर भी कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी सासामूसा रेलवे स्टेशन के पास छापेमारी करते हुए एक शराब तस्कर को पकड़ा। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी धीरज कुमार शाह है। यह मसरक सारण छपरा का रहने वाला बताया जा रहा है। इस आरोपी के पास से अलग अलग ब्रांड के कई शराब की बोतल मिली है, जिसके बाद अब इसे भी गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के अमुआ नक्षेद गांव में भी छापेमारी की। यहां भी देशी शराब के साथ एक महिला सहित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला कमलावती देवी पति सुदामा शाह, इसके पास से 24 लीटर से अधिक बंटी बबली शराब मिली है। यह अमुआ नक्षेद वार्ड नंबर 4 की रहने वाली है। दूसरा सुग्रीव शाह पिता स्वर्गीय बबन शाह, इसके पास से 9 लीटर शराब मिली है। यह भी अमुआ नक्षेद का ही निवासी है। दोनों को उत्पाद पुलिस ने पकड़ा है। अब दोनों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज जिले के सभी थानों पर चौकीदारी परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें चौकीदारों को अपने अपने क्षेत्र में सतर्क रहकर सक्रिय एवं संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने, पुलिस एवं आम जन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखने तथा जेल से छूटे पेशेवर अपराधियों पर विशेष नजर बनाए रखने एवं उनकी गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का नियमित संकलन करने के भी आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही शराब

हालांकि तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई, गाड़ी छोड़कर तस्कर फरार हो गया। पुलिस ने शराब और स्कॉर्पियो को जब्त किया है और इस गाड़ी के मालिक एवं चालक के विरुद्ध अब प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आज कुचायकोट प्रखंड के अहिरौली दुबौली पंचायत भवन परिसर में नालसा योजना 2025 और सर्वोच्च न्यायालय विशेष लोक अदालत समाधान समारोह कार्यक्रम का तथा स्थायी लोक अदालत के गठन इत्यादि पर लोगों को जागरूक किया गया, इसकी जानकारी दी गई। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह और PLV इम्तियाज अंसारी की टीम ने उपस्थित प्रतिभागियों को अनदेखी रोके गए और प्रभावितों की क्षमता तथा लचीलेपन का समर्थन योजना 2025 के अंतर्गत भी जानकारी दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जेल में बंद कैदियों के आश्रितों और अपराध के पीड़ितों को कानूनी, सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें गरिमा के साथ पुनर्वासन के संदर्भ में लोगों को बताया गया और इस योजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए और इसका लाभ लेने के लिए जनता को भी जानकारी दी गई। इधर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर जिले में वांछित और फरार अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सिधवलिया थाना कांड संख्या 105 2025 धारा 83 BNS के प्राथमिकी अभियुक्त ईश्वर प्रसाद पिता बनारस प्रसाद, इंद्रजीत प्रसाद उर्फ अमरजीत प्रसाद पिता बनारस प्रसाद और बनारस प्रसाद पिता रामचंद्र प्रसाद तथा एक महिला जो सभी बलरा थाना सिधवलिया के निवासी है, इनके घर पुलिस ने इश्तेहार का तामिला किया। बताया जा रहा है कि प्राथमिकी अभियुक्त सुग्रीम कुमार उर्फ राजू कुमार पिता बीरेंद्र महतो जो परसौनी थाना सिधवलिया के निवासी हैं, इनके विरुद्ध भी अदालत के द्वारा निर्गत इश्तेहार का तामिला किया गया। इस दौरान सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ आरोपियों के दरवाजे पर इश्तेहार को चस्पा किया और जल्द से जल्द सरेंडर करने के निर्देश दिए, अन्यथा आरोपियों के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री और बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी का आज उनके क्षेत्र में आगमन हुआ था। बताया जा रहा है कि मिथिलेश तिवारी वाल्मीकि नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को लेकर शामिल होने गए थे और वहां से लौटते समय वे डुमरिया घाट पर पहुंचे, जहां कल 3 बच्चियां जो नदी में लापता हो गई हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। उन बच्चियों में से एक बच्ची का शव आज NDRF और SDRF ने बरामद किया। इसी दौरान मिथिलेश तिवारी वहां पहुंचे, पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की और खोज अभियान में लगे पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही जिस बच्ची का शव मिला है उसके परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिथिलेश तिवारी ने भी परिजनों से मुलाकात की, उन्हें आवश्यक सहयोग करने का आश्वासन दिया। साथ ही जो दो बच्चियां अभी भी लापता है उनकी भी तलाश चल रही है, जिसमें उन्होंने पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इधर बरौली में जदयू के नगर अध्यक्ष दिनेश प्रसाद की अध्यक्षता में जदयू सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर अध्यक्ष दिनेश प्रसाद ने जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल को पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि हर वार्ड में वार्ड अध्यक्ष बनाए जाएंगे और नगर कमेटी का भी गठन शीघ्र ही किया जाएगा। समारोह में आदित्यनाथ दुबे, मनीष सिंह, राजाराम सिंह, अखिलेश प्रसाद पटेल, दशरथ सिंह पटेल सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिले में पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला शाखा गोपालगंज में आज यहां के पेंशनर एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक प्रभुनाथ ओझा का निधन हो गया, जिसके बाद उनका श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया। इस दौरान तमाम सदस्यों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सदस्यों ने कहा कि ओझा जी जन सेवक संघ के एक अच्छे सिपाही के रूप में लोगों की सेवा कर रहे थे। उनके निधन से संगठन को भारी नुकसान हुआ है। वे हमेशा अभिभावक के तरीके से संगठन को अपना आशीर्वाद, सहयोग और परामर्श देते रहते थे। उनके मार्गदर्शन में लगातार संगठन आगे बढ़ रहा था। अब उनके निधन से संगठन को अपूर्णीय क्षति हुई है। इस दौरान दर्जनों गणमान्य लोग और संगठन के सदस्य मौजूद रहे, जिसमें रामेश्वर सिंह, देवधारी रावत, राजेंद्र सिंह, शिव नारायण बारी, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, महंत मिश्रा, बीरेंद्र राम, श्रीनिवास सिंह, लालदीप नारायण राय, सुरेंद्र सिंह और सुरेंद्र चौधरी तथा रामा शंकर कुंवर इत्यादि लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
इधर गोपालपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सदर SDPO वन मौके पर पहुंचे, तमाम पुलिस के पदाधिकारी और स्थानीय थाना अध्यक्ष तथा FSL की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक अनुसंधान की। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी विकास कुशवाहा को गिरफ्तार किया है, जो गोपालपुर थाना क्षेत्र के

0: रामपुर खुर्द के बुनी कुशवाहा का पुत्र बताया जा रहा है। आरोपी से पूछताछ में उसने उक्त घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार के आवेदन पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अब इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। उचायकोट के विधायक पप्पू पांडे के केस में अब सीआईडी करेगी जांच। लगभग दर्जन भर जगहों से शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज विधिक जागरूकता कार्यक्रम का भी उचायकोट में हुआ आयोजन। कई अपराधियों पर अदालत के द्वारा जारी इश्तेहार का पुलिस ने किया तामिला। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
6: ठक ठक
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291 और ईमेल आईडी है radioremjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: नमस्कार प्रणाम। आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आप सभी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका प्रिय कार्यक्रम आपका संदेश मिला में आप सभी का स्वागत करते हैं। रेडियो रिमझिम जब से शुरू हुआ और तब से अब तक प्रत्येक रविवार को शाम को 7:45 में और इसका पुनः प्रसारण सोमवार को सुबह 7:10 पर होते आ रहा है। यह कार्यक्रम अपने प्रिय श्रोताओं के विचारों पर, सुझावों पर आधारित होता है। आप लोग द्वारा समय समय पर जो सुझाव देते हैं, विचार देते हैं, उसी के आधार पर हम आगे का कार्यक्रम तय करते हैं। मेरा मानना है कि जितने भी हमारे सुनने वाले मित्र हैं, सहयोगी हैं, वे हमसे बेहतर हमें सुझाव देकर रेडियो रिमझिम 90.4 को बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारे पास न इतना ज्ञान है न बुद्धि है, चूंकि लंबे समय से रेडियो रिमझिम का प्रसारण करते करते थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है, फिर भी जमीनी स्तर का अनुभव का कमी रहता है। जो हमारे प्रिय श्रोता हैं, अपने रेडियो लेकर बैठते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, हालचाल गोपालगंज सुनते हैं और अपने समय को अच्छे तरीके से बिताते हैं। हमारे कई ऐसे श्रोता हैं जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद उनका मन पसंद रेडियो रिमझिम है और उसे सुनते रहते हैं और अपना समय जो है अच्छी तरह से बिताते हैं। एक समय था कि जब शाम को गांव में 6:00 सभी लोग बाजार हाट से चले आते थे तो एक जगह इकट्ठा होते थे, अपने जीवन का अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, साझा करते थे और अपने जीवन की कहानियां सुनाते थे। और वहां जो बच्चे होते थे बैठे हुए, वे जो है अपने बुजुर्ग का, अपने से अनुभवी लोगों का अनुभव सुनते थे और जीवन को बेहतर कराते थे। मानते हैं आज के जमाने से उस जमाने में सुख सुविधा कम था, लेकिन बड़ा ही संतोष था। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। हम ऐसे भाग्यशाली लोगों से में से हैं जो अपने जीवन के 3 पीढ़ियों के साथ रहने का मौका मिला। एक जो हमारे बुजुर्ग थे उनका अनुभव लिए, दूसरा जो हमारे हम उम्र हैं उनका अनुभव लेते हैं और तीसरा जो आज के युवा साथी हैं उनका भी अनुभव लेते हैं और सबको पिरोकर आपका संदेश मिला कार्यक्रम में रखते हैं। हमने तीनों समय देखा और जो अनुभव रहा वह बड़ा ही बेहतर रहा। जो पहले का समय था वह भोजन के लिए संघर्ष होता था, आज का समय है यह सुख सुविधा के लिए संघर्ष है। तनाव जो है हम जितना पालेंगे उतना ही बढ़ेगा और कोई भी मनुष्य इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो तनाव नहीं रखता है। हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी समस्या है, अपना अपना तनाव है। किसी को घर बनाना है, किसी को पटीदारी का झगड़ा फरियाना है, किसी को जमीन खरीदना है, किसी को घर रंगवाना है, किसी को शादी ब्याह करना है, किसी को कहीं जाना है। यह जो है लंबा अनुभव रहा है। जिंदगी में हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। कोई भोजन के लिए संघर्ष करते करते बड़ा होता है, कोई पढ़ाई करते करते, कोई नौकरी में दूसरे प्रदेशों में रहकर, विदेशों में रहकर, और हर जगह का अनुभव जो है अनमोल होता है। और उस अनुभव को जब अपने परिवार के साथ साझा करता है, शेयर करता है, तो वह बच्चे जो है अनुभवी हो जाते हैं। मान लिया जाए कोई बच्चा यदि 20 वर्ष का है और 60 वर्ष और 70 वर्ष के दादाजी के साथ उनके जीवन का अनुभव यदि वह लेता है तो 20 वर्ष के उम्र में ही उसे 90 वर्ष का अनुभव हो जाएगा। एक तो अपना अनुभव, दूसरे अपने परिवार के सदस्यों का अनुभव, यह जीवन का रहस्य है। आज जब हम समझते हैं कि आज के बच्चे जो है जन्म से ही बड़े तेजस्वी हो रहे हैं, लेकिन यदि वह सकारात्मक रास्ते पर चले तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे, और यदि कोई गलती से नकारात्मक रास्ते को पकड़ लिया तो वह बड़ा ही दुखदायी हो जाता है। जीवन यह कहता है कि जिसको जितना मिला है उसी में संतोष करना है, और दूसरे के धन संपत्ति मानोबल को देखकर हाय हाय नहीं करना है। कई लोग जो है छटपटाते रहते हैं, कई लोग अंदरे अंदर व्याकुल हो जाते हैं कि हम क्या करें, समय बीत रहा है, लेकिन जो प्रभु ने लिखा है वही होने वाला है। जीवन का यही सत्य है कि जीवन में जितना मिला यदि संतोष हो गया तो व्यक्ति जो है बेहतर जीवन जीता है, और जो मिलने वाला है वह आपको किसी न किसी रूप में मिलते जाएगा। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ऐसे ऐसे किसानों को देखे हैं जो 24 घंटे अपने खेतों में लगे रहते हैं, खेती करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के मुकाबले प्राप्ति कम होती है। और ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा सा मेहनत करते हैं और ज्यादा प्राप्ति होती है। कोई कहता है यह पुनर्जन्म का फल है, कोई कहता है पिछले जन्म का फल है, लेकिन सच्चाई क्या है इसका तो अनुभव नहीं है। मेरा मानना है कि जीवन में यदि हमें बेहतर बनना है तो अपने काम पर अपनी पूरी शक्ति लगाना होगा, और यदि हम अपने काम पर फोकस करेंगे, शक्ति लगाएंगे, तो जीवन में बेहतर बन जाएंगे। आपको अपने काम में इतना शक्ति लगाना है कि दूसरे के तरफ देखने और समझने का मौका नहीं मिले, और यदि आप अपने आप पर फोकस करेंगे तो बेहतर होगा। बचपन में जब हम लोग विज्ञान पढ़ते थे तो एक पावड़ शीशा मिलता था छोटा सा, और शिक्षक बताते थे विज्ञान का कि सूरज की किरण जब एक जगह केंद्रित होता है तो कागज में भी आग लग जाता है। उसी तरह व्यक्ति के अंदर जो अपार ऊर्जा है यदि वह अपने कामों में लगाए तो बेहतर हो सकता है। कहा जाता है कि कितना ही हम मेहनत करते हैं सफलता नहीं मिलती है, तो मेरा मानना है कि तरीका बदलना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आदरणीय श्रोता बंधु, आप सभी को पता ही है, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं उन्हें एक बार फिर बताते चलूं, रेडियो रिमझिम का सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, यह सब है। एक बार उसे जरूर देखें। क्योंकि रेडियो रिमझिम अंदर क्या करता है, समाज में क्या करता है, इन सब का तस्वीर जो है हम उसमें शेयर करते हैं। दूसरा, ऐप के माध्यम से हम 24 घंटे प्रसारण करते हैं और रेडियो के माध्यम से सुबह 5 बजे से रात को 11:10 तक रेडियो पर प्रसारण चलते रहता है। जब कभी आंधी पानी तूफान बिजली कड़कड़ाहट आता है उस स्थिति में हम अपनी सेवाओं को रेडियो पर बंद करते हैं लेकिन ऐप पर चालू रखते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज है और बिजली जो है एक ऐसा चीज है कि कभी कभार कहीं गिर सकता है। रेडियो रिमझिम का टावर है जो जमीन से 100 फीट ऊपर तक है, उस पर जो है बिजली गिरने की संभावना रहती है। इसके पूर्व 2 साल पहले एक बार बिजली जो है हमारे टावर पर गिर गया, बहुत सारा आर्थिक नुकसान हुआ। उससे हम उबर कर आगे के लिए सचेत रहते हैं कि आधी पानी और बिजली कड़क में हम अपने प्रसारण को रोक देते हैं केवल रेडियो पर। आदरणीय श्रोता बंधु, आप लोगों का भी बहुत सारा संदेश आया है, बहुत सा विचार आया है जिसे मैं अनुग्रहित करता हूं, और बहुत सारे हमारे विद्वान मित्र हैं जो समय समय पर हमें सुझाव देते हैं। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो है हमेशा समाज में जागृति का अलख जगाता है और उस अलख पर सारा समाज चलता है। तो सारे बुद्धिजीवी समाज को एक बार हम नमन करते हैं कि रेडियो रिमझिम में समय समय पर आप लोग भी अपने बातों को पहुंचाते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। और आज तो स्मार्ट मोबाइल का जमाना है, हर चीज मोबाइल पर हम देख लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा हम सुझाव देंगे कि जो रेडियो का प्रसारण होता है उसका निगरानी आईबी करता है, सीआईडी करता है, प्रशासन करता है, और कोई भी सूचना देने के पहले जितने भी उसके स्रोत हैं उसकी पुष्टि करके ही हम प्रसारित करते हैं। एक जिम्मेवार रेडियो होने के नाते हम हर तथ्य पर उसका परख करने के बाद ही आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आजकल टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कई यूट्यूबर हो गए हैं जो कहीं कहीं कुछ भी सूचना देते हैं, तो उसका जो है ख्याल रखना है जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको कि हम किस सूचना पर विश्वास करें। रेडियो रिमझिम भारत सरकार के अधीन है, उसके मार्गनिर्देशन में अपना प्रसारण करता है और उसके सभी गाइडलाइंस का 100% अनुपालन करता है, और समय समय पर संचार मंत्रालय, दिल्ली का मंत्रालय हमारे रेडियो स्टेशन के कार्यक्रमों का, रेडियो स्टेशन के प्रसारण का, ट्रांसमीटर का विजिट करते हैं ताकि हम जो है उसके मार्ग निर्देशन पर कार्य कर रहे हैं कि नहीं। आज लंबे समय से हम उन सब मार्ग निर्देशन पर 100% खरे उतरे हैं, इसलिए हमें भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जो नए हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें, भारत सरकार में सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा हमें जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, धनराशि मिला, शील्ड मिला, और जो सूचना और प्रसारण मंत्री उस समय थे उनके हाथों से पुरस्कार मिला। और इसका मुख्य कारण है कि हमारे क्षेत्र के बेजोड़ श्रोता हैं जो अपने सुझाव को देते हैं और उस पर हम अमल करते हैं। एक चना जो है भाड़ नहीं फोड़ता है, एक व्यक्ति बेहतर नहीं हो पाता है, उसके पीछे हजारों लोगों का त्याग होता है, तभी वह संस्था जो है बेहतर कर पाता है। आदरणीय श्रोता बंधु, आप लोगों का भी बहुत सारा संदेश आया है और मैं वादा करता हूँ कि पूरी ईमानदारी से उसका जवाब दूंगा। मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर सोनू जी जो प्रत्येक रविवार को बैठते हैं, आज भी बैठे हैं, वे प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं और हम जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
0: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश है मेरे पास और यह संदेश फोन करके लिखवाया गया है। नाम लाल बहादुर प्रसाद, ग्राम नाधना, प्रखंड बरौली से लिखवाते हैं। पहले गांव में बालू मक्खी और मच्छर मारने की दवा का छिड़काव होता था, अब नहीं हो रहा है। मैं रेडियो रिमझिम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस पर ध्यान दिया जाए और छिड़काव कराया जाए। दूसरी बात यह है कि मुखिया जी के द्वारा गांव में लाइट लगाया गया है और बहुत लाइट खराब हो गया है, अब इसका कोई सुध लेने वाला नहीं है, इसको बनवाया जाए। और सरकारी चापाकल भी कई खराब हो गए हैं, इसे भी ठीक कराया जाए। और कृपा शंकर सर से आग्रह है कि भोजपुरी में प्रादेशिक समाचार सुनाया जाए और आईपीएल का फाइनल मैच का प्रसारण किया जाए। धन्यवाद। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय लाल बहादुर प्रसाद जी, प्रखंड बरौली, ग्राम नाधना से, आप हमेशा सामाजिक विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, हमें काफी अच्छा लगता है। आपका प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं कहूँगा कि जहाँ एक तरफ लोग अपने बेटा बेटी नात नतकुर के पीछे पड़े हैं कि उनका विकास हो, वह सेटल हो जाए, वहीं दूसरी तरफ आप सामाजिक मुद्दों को उठाकर एक सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य करते हैं। हम इसकी प्रशंसा करते हैं और सराहना करते हैं। कहा जाता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, समाज के लिए यदि हम कुछ कर पाते हैं तो हमारे जाने के बाद भी लोग याद रखेंगे। एक छोटी सी बात अपने जिंदगी का मैं बताते चलूं। हमारे यहाँ एक जीता बारी जी थे और वह जो थे, जहाँ खाली जमीन देखते थे पीपल का बरगद का गाछ लगा देते थे। हमारे गांव के पश्चिम में एक प्रति परात सरकारी भूमि था, वहाँ जो है कई तरह के पीपल के बरगद के वृक्ष लगाए। जब भी हम गांव जाते हैं, वह तो चले गए जीता बारी जी, लेकिन लोग कहते हैं कि यह गाछ जो है जीता बारी जी लगाए हैं। उनको मरे हुए 25-30 साल हुआ, लेकिन उनका लगाया हुआ पौधा देखकर आज भी बच्चे जीता बारी जी को याद करते हैं और अपने माँ बाप से पूछते हैं ये जीता बारी कौन थे, क्या करते थे, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो समाज के लिए यदि हम कुछ करते हैं और इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो किए गए कार्यों को लोग याद रखते हैं। यह समय जो है ऐसा होता है, लोग कहते हैं कोई किसी को याद नहीं रखता है, लेकिन यदि हम अच्छा किए हैं तब पर भी याद रखा जाएगा। और केवल लोगों को ठग ठग के धन बनाए हैं उसको भी लोग याद रखते हैं और उसके आने वाले पीढ़ी से अपना दूरी बना लेते हैं। आपने सही कहा, बालू मक्खी जो है बड़ा खतरनाक मक्खी है, काला जर लाने में इसी का जोड़ रहता है। और सरकार का भी यह मानना है और स्वास्थ्य विभाग मलेरिया विभाग जो है समय समय पर इसका छिड़काव कराता है। तो अभी काहे विलम्ब हो रहा है, इसके लिए हम जिला मलेरिया पदाधिकारी से बात करेंगे और सर का ध्यान जो है इस तरफ आकर्षित करेंगे कि यदि संभव हो तो प्रखंड बरौली, ग्राम नाथना के अलावा जो जो गांव है जहां बालू मक्खी की होने की संभावना है वह जो है किया जाए। दूसरी बात आपने रखा कि मुखिया जी सोलर लाइट वाला लाइट लगवा दिए और जो है जिस दिशा में है कोई जलता है कोई बंद है उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि सरकार हमको हमारे लिए सड़क बनवा दिया और सड़क पर थोड़ा सा गड्ढा हो गया तो हम एक टोकरी माटी नहीं डालते हैं, फिर सड़क टेंडर निकालेगा, सरकार टेंडर निकालेगा, उस गड्ढे को भरवाएगा, तब हम चलेंगे। सरकार का जो कर्तव्य है कर रही है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते हम लोग का भी कुछ कर्तव्य बनता है। जैसे सड़क पर शीशा नहीं फेंकना, कांटी नहीं फेंकना, सड़क पर पेशाब नहीं करना, यह जो है सार्वजनिक चीज हो जाता है। तो जहाँ सार्वजनिक है सरकार प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ दायित्व है, कुछ जिम्मेवारी है कि अगर खड़ौजा कराया गया है गांव में और चार गो ईंटा उखड़ गया है तो हम जो है 5 मिनट समय देकर उस ईंटा को सेट कर सकते हैं। हम जब विदेशों की कहानियां पढ़ते हैं, विशेष करके जापान का, कि वहाँ के लोग जो है देश के प्रति इतना सजग होते हैं और राष्ट्र के प्रति इतना जिम्मेवार होते हैं कि उन कहानियों को पढ़कर भाव विभोर मन हो जाता है। तो हमें भी दूसरों से प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि मुखिया जी सोलर लाइट लगाए हैं, उसमें का कोई तार छूट गया है, सोलर पैनल पर यदि गंदगी जमा हो गया है, तो हमें भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उसे साफ करना चाहिए। किसी इलेक्ट्रीशियन से बुलाकर थोड़ा सा उसका देखभाल भी करा लेना चाहिए। और वैसे मुखिया जी जो जन प्रतिनिधि होते हैं वह गांव में ही घूमते रहते हैं, उनके जानकारी में भी यह बात दिया जा सकता है। तीसरी बात, आपने PhD के बारे में कहा कि चापाकल खराब है, तो सरकार अपने स्तर से यह देख रही है और आपको पता ही है कि बिहार के कई जिलों में जो भू स्तर है, जल का जो स्तर है, वह काफी नीचे चला गया है। इस वजह से कई ठो चापाकल में पानी नहीं आ रहा है। जो PhD विभाग है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जो मिंज स्टेडियम गोपालगंज के पास है, उसके पदाधिकारी भी इसको ठीक कराने के लिए व्याकुल है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी इसकी जानकारी हमें देनी चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात कही, ये बिहार पटना से नया भोजपुरी समाचार 5 मिनट के लिए चालू हुआ है, हमारे पास भी सूचना आया है कि शाम को 6 बजे यह प्रसारित हो रहा है, तो उसे भी हम प्रसारित करें, तो हम भी इसके विषय में अपने टीम के साथ चर्चा करेंगे। यदि संभव हुआ तो हम भी भोजपुरी समाचार का प्रसारण शाम को 6 बजे करेंगे, कहीं कोई बात नहीं है। हम जो है अपने श्रोताओं के प्रति सेवक के रूप में देखते हैं, और श्रोता को जो अच्छा लगता है हमें करने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है। और जो IPL के बारे में आपने बताया, तो उसका वार्षिक प्रसारण किया जाए, यानी फाइनल प्रसारण किया जाए, तो इस पर भी हम अपने टीम से चर्चा करेंगे, कब है, किसके साथ है। तो उसका प्रसारण जो है 20 ओवर का खेल है, प्रसारण करने में कहीं हिचकिचाहट नहीं है, हम कर देंगे। और सबसे अच्छी बात है, श्री लाल बहादुर प्रसाद जी, आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप जो है अपने बातों को लिखवाने के लिए कई बार हमारे टीम के लोग फोन पर उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो दोबारा करते हैं, तिबारा करते हैं, लेकिन अपने संदेश को लिखवाते हैं। जो हमारे सहयोगी हैं हमें बताए कि कल भी फोन आया था, आज दोपहर में आया, लेकिन उठा नहीं। तो अंत में जो सोनू जी हैं वह जो है आपको कॉल बैक किए और आपका संदेश लिखे। तीन सब बातों के साथ आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं, और रेडियो रिमझिम के आप एक बेहतरीन श्रोता हैं जो हमें सुनते हैं और अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं।
2: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है विवेक प्रजापति हरहरवा पंचदेवरी प्रखंड से। रेडियो रिमझिम को ऐप से सुनता हूं, जो नई RJ आई है उसे और प्रशिक्षण की जरूरत है। ऐप पर बहुत ही सुरीली और मीठी आवाज आती है, रिकॉर्डेड कार्यक्रम भी बहुत ही अच्छे हैं। उसे नियमित चलाया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
1: आदरणीय विवेक जी, आपके ग्राम हड़ारवा के प्रखंड पंचदेवरी के सभी नागरिकों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगता है कि अपने जिले के 14 ब्लॉक 2 अनुमंडल से हर तरह की सूचना हमें मिलते रहती है। हर श्रोता का टेस्ट स्वाद जो है अलग होता है। आपने सही कहा, जो हमारी नई आरजे भारती आई है, प्रशिक्षण से निकलकर अभी तुरंत कार्यक्रम कर रही है, उसमें भी कुछ कमियां हैं जिसे सुधारने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमें लगता है कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी वह आम आरजे के तरह अपना कार्यक्रम करेगी। और दूसरी बात, आपने लिखा कि हमारे ऐप के माध्यम से आप सुनते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हम अपने तकनीकी टीम को धन्यवाद देंगे कि वे हमेशा ऐप पर प्रसारण होने वाले कार्यक्रमों की निगरानी करते हैं। अच्छा लगा। और बहुत सारे रिकॉर्डेड कार्यक्रम है जिसमें भारत की कहानी, विक्रम बैताल की कहानी, रूह की कहानी, यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है। हमारे लिए बड़ा ही संतोष की बात है कि जो हम प्रसारित कर रहे हैं हमारे श्रोताओं को पसंद आ रहा है। इसके लिए आदरणीय विवेक जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिन्हें पता नहीं है कि रेडियो रिमझिम का ऐप गूगल के प्ले स्टोर में है, रेडियो रिमझिम के यूट्यूब पर हालचाल गोपालगंज प्रतिदिन रात को 12 बजे के बाद आ जाता है, वे अपने जरूरत के अनुसार सुन लेते हैं। और फेसबुक पर जो भी हम क्षेत्र भ्रमण करते हैं उसका तस्वीर डालते रहते हैं, तो आप लोग उसे भी देखें, विजिट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। आपने संदेश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
2: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है रजेश बैठा जी का। सर नमस्कार, रेडियो रिमझिम की टीम सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत हमारे गांव आई थी। आयुष्मान मंदिर के डॉक्टर का इंटरव्यू रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर देखे, बहुत ही अच्छा है। सर्वेकर्ता भी हमारे गांव आए थे, हम लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय राजेश जी, आपके पूरे परिवार को, वृंदावन गांव के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगा, आप जो है करंट तत्कालिक सूचना दिए। आपको पता ही है कि रेडियो रिमझिम द्वारा सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसके लिए एक टीम जो है आई है, जो रेडियो रिमझिम के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 15 किलोमीटर के रेडियस में आवृत्ति में भ्रमण कर रही है, हर लोगों से रेडियो रिमझिम के बारे में जानकारी ले रही है, सेहत के बारे में सर्वे कर रही है। इसके अलावा किस गांव में कितने लोग रेडियो से और कितने लोग ऐप के माध्यम से सुनते हैं उसका फार्म जो है भर रही है। यह सूचना हम करीब 1-1.5 महीना पहले आप लोगों को दिए थे, और जो हमारे अत्यंत आदरणीय श्रोता हैं, आपके संदेश के माध्यम से उन्हें यह जानकारी हुआ था। आपके गांव में कार्यक्रम करने वाले लोग भी गए, वे लोग भी बता रहे थे कि वृंदावन गांव के लोगों ने रेडियो रिमझिम परिवार का काफी सकारात्मक सहयोग किया। इसके बाद जो सर्वे करता है उसके प्रमुख हैं सत्य प्रकाश सिंह जी, उन्होंने भी बताया कि हम वृंदावन गांव में गए थे और उस गांव में जितने लोग रेडियो सुनते हैं, ऐप सुनते हैं, उनसे मिले थे। कुछ लोग उस समय नहीं थे, लेकिन जो थे उनसे बातचीत किए और फार्म भरे। यह जो है सकारात्मक सहयोग है रेडियो रिमझिम परिवार के लिए, जो श्रोताओं द्वारा समय समय पर दिया जाता है। इसके लिए आदरणीय राजेश बैठा जी, हम आपको नमन करते हैं। और आपने जो सकारात्मक सहयोग दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उम्मीद करते हैं रेडियो रिमझिम सुनते रहेंगे और समय समय पर आपका संदेश मिला कार्यक्रम में अपने बातों को रखेंगे। यह कार्यक्रम दो तरफा संवाद, हम सप्ताह भर क्या प्रसारण किए, क्या त्रुटि रह गई, यह सब सुझाव जब आप लोगों के द्वारा जमीनी स्तर से आता है तो हमें भी अपनी कमियों को दूर करने का एक अवसर मिलता है और रेडियो रिमझिम का प्रसारण सुचारू करने का एक अवसर मिलता है। तो जब दोनों तरफ से सकारात्मक पहल होता है तो प्रसारण बेहतर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है जागीरी टोला से सरकारी शिक्षक धर्मेंद्र सिंह जी का। सर नमस्कार, मैं आपका संदेश मिला कार्यक्रम नियमित सुनता हूँ, काफी अच्छा लगता है। आचरण और संस्कार मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। सर्वे करता हमारे गांव में दिन भर रहे और कई तरह के प्रश्न रेडियो रिमझिम के बारे में पूछे, लोगों ने जवाब दिया। संयोग से रविवार का दिन था, मैं भी रहा। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
1: आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी, आपके पूरे परिवार को, जागीरी टोला गांव के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने जो अपना मूल्यवान समय सर्वेकर्ता के साथ दिया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। जब कहीं कोई बाहर से आता है अनजान जगह पर अनजान लोगों के बीच और वहाँ जब सकारात्मक सहयोग मिलता है तो वह व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है उस जगह की प्रशंसा करता है और उसके मुखार बिंदु से जो सुनते हैं वे भी वहाँ की प्रशंसा करने लगते हैं। सेहत सही लाभ का ही एक कार्यक्रम है। पिछले दो वर्षों से रेडियो रिमझिम पर विज्ञापन के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से यह प्रसारित किया जा रहा है कि जीवन का सबसे मूल्यवान चीज जो है सेहत होता है। उम्र चाहे कोई भी हो, यदि हमारा शरीर ठीक है तो दुनिया का हर सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि सेहत में गड़बड़ी है तो सामने कितना ही पकवान रखा गया हो लेकिन हम चख नहीं पाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने सेहत पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इन कार्यक्रमों को हम लोग लगातार प्रसारित करते हैं जनहित में। जब हम इस कार्यक्रम को करते हैं तो सरकार या गैर सरकारी संस्थान द्वारा एक सर्वे किया जाता है, एक जांच किया जाता है कि आपने रेडियो से प्रसारण किया, इसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ा, कितने लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं, कितने लोग पसंद करते हैं कि केवल फिल्मी गीत का गाना सुनना पसंद करते हैं, वह जो है एक सर्वे चल रहा है। यह करीब 3 महीने तक चलेगा जिसमें 1 महीना 10 दिन बीत चुका है और वह लगभग हमें लगता है कि 25 से 50 गांव में वह टीम जाएगी। उस टीम में महिला भी है, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, सारे अनुभवी लोग रहते हैं। तो आपके गांव में पूरा दिन वे लोग सर्वे किए, इसका अर्थ यह है कि आपके गांव में रेडियो सुनने वाले लोग या ऐप से रेडियो रिमझिम को सुनने वाले लोग ज्यादा हैं और इसलिए वे लोग पूरा दिन वहां बैठकर वीडियो बनाकर, फोटो खींचकर, आपसे बात करके उसका ऑडियो लेकर अपने से ऊपर भेजेंगे। आपने जो सहयोग किया इसके लिए हम अपनी पूरी टीम के तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। और शिक्षक तो वैसे भी महान होता है, वह समाज को एक दिशा देता है और समाज में ऐसे प्रोडक्ट लाता है जिसमें IAS, IPS और SDO, BDO सब बनते हैं। यदि शिक्षक नहीं रहे तो समाज जो है ज्ञान से वंचित हो जाएगा। मानते हैं शिक्षा जगत में भी कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन आज भी 99% शिक्षक सही, स्वच्छ और पाक होते हैं, यह मेरा मानना है। और शिक्षक का चोला पहनते ही व्यक्ति के अंदर एक आंतरिक बदलाव आता है, वह समाज के प्रति जवाबदेही बन जाता है। अपना काम छूट जाए लेकिन हर बच्चा पढ़े, जीवन में आगे बढ़े और उस शिक्षक को याद रखे, यह एक सपना बन जाता है। पैसा कमाने के बहुत सारे नौकरी चाकरी व्यवसाय है, लेकिन जो शिक्षक बना वह समाज और देश के लिए अपना सर्वोच्च सेवा देता है और समाज के बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास करता है। उस सेवा में आप रहकर रेडियो रिमझिम परिवार के सर्वे टीम का जो सहयोग किया, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आपका सकारात्मक सहयोग रेडियो रिमझिम परिवार को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है राजेंद्र नगर गोपालगंज अनुष्का पांडे। सर, रेडियो रिमझिम के कार्यक्रमों को सुनती हूं और रेडियो रिमझिम के सोशल मीडिया को देखती हूं, काफी अच्छा लगता है। रेडियो रिमझिम में कोई काम करना चाहे तो उसकी क्या क्या नियम है, थोड़ा सा बताए तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
1: आदरणीय अनुष्का जी, आपके माता पिता को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जब सभी लोग सब चीज सुनते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट देखते हैं तो रेडियो रिमझिम के बारे में उनके पास भरपूर जानकारी प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति के बोलने से, चलने से, पहनने से उसका चरित्र और संस्कार दिखाई देता है। आदरणीय अनुष्का जी, रेडियो रिमझिम एक छोटी संस्था है और इसमें यह प्रयास किया जाता है कि जब हम श्रोताओं से जुड़े तो एक अपनत्व हो, एक भाईचारा हो और समाज के समृद्धि के लिए आवाज के माध्यम से हम जो कर सकते हैं करें। रेडियो रिमझिम के बारे में यदि भरपूर जानना हो तो उसके फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आप देखिएगा तो हर चीज उसमें फोटो सहित लिखा और पढ़ा गया है। यदि कोई काम करना चाहता है तो सबसे पहला काम है कि रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर यहाँ का संपर्क नंबर दिया गया है, उसके व्हाट्सएप पर अपना रिज्यूम या बायोडाटा दे और फिर यहाँ से फोन जाएगा और एक समय निश्चित करके इंटरव्यू होगा, बातचीत होगा, काम करने का तरीका का जांच परख होगा, आपके एबिलिटी का टेस्ट होगा और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होती है जो एक टीम है करती है। यदि आप जैसे कोई भी लड़का या लड़की काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना रिज्यूम रेडियो रिमझिम के व्हाट्सएप पर भेजें या रेडियो रिमझिम कार्यालय के बाहर एक बॉक्स है उसके अंदर लाकर डाल दें हार्ड कॉपी। उसके बाद उन्हें सूचना दी जाएगी और समय निश्चित करके उन्हें बुलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है विजय सिंह आशा रावत के टोला देवापुर से। सर नमस्कार, हमारे गांव में रेडियो और ऐप दोनों माध्यम से सुनते हैं लोग। हमारे गांव में भी सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वेकर्ता की टीम हमारे गांव आई थी। करीब 5 घंटों तक भ्रमण किया और जो रेडियो सुनता है उनसे तरह तरह की प्रश्न पूछे, लोगों ने जवाब दिया। मैं भी रेडियो रिमझिम का हालचाल बड़े ही ध्यान से सुनता हूँ तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही देखे तो मेरे पास अभी कई संदेश है लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा ले।
1: आदरणीय विजय सिंह जी, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आपके पूरे ग्रामवासियों को, आपके परिवार के सदस्यों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगा आपका संदेश मिला कार्यक्रम में। हमें यह भी पता चला कि जो सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत टीम आई है, वह रेडियो रिमझिम के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ घूम रही है, लोगों से बात कर रही है। बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमें सुनते हैं और वहाँ के लोग जो कम सुनते हैं, वे भी उस टीम के साथ सकारात्मक सहयोग कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, जैसे वृंदावन, जागीरी टोला आपके गांव में यह टीम गई थी, और हमें लगता है कि अभी बहुत सारे गांव में वह टीम जाएगी और हमारे आदरणीय श्रोता उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, उन्हें सकारात्मक सहयोग करेंगे। आज जब रेडियो कम सुनने वाले लोग हैं, ऐप पर ज्यादा लोग सुन रहे हैं, तब पर भी गांव-गांव में और शहर में भी बहुत सारे लोग हैं जो रेडियो रखे हुए हैं और सुन रहे हैं। रेडियो से जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, उसे जो है कहाँ रोजगार मिलेगा इसकी भी सूचना मिलती है। और सूचना तंत्र ऐसा है कि सही और सटीक सूचना यदि आपको मिल रही है तो आपके जीवन में समृद्धि भी आएगी। जैसे मौसम खराब होने वाला है इसकी सूचना दी जाती है, रोजगार समाचार चलता है, राष्ट्रीय और प्रांतीय समाचार चलता है, और हर तरह की सूचना त्वरित गति से और निःशुल्क आप प्राप्त करते हैं। यदि आप किसी अखबार को खरीदिएगा तो पैसा देना पड़ेगा, कोई पत्रिका लीजिएगा उसका भी मूल्य चुकाना पड़ेगा, लेकिन रेडियो एक ऐसा यंत्र है जिसे आप अपने सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं और जितना चाहें उतना सुन सकते हैं। और हमें जो है यह ध्यान रखना है कि समय बदल गया, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी बदला। पहले रेडियो जो है बहुत बड़ा बड़ा आता था, एक दौर था, फिर धीरे धीरे वह पॉकेट में रखने वाला रेडियो आ गया, और आज तो हर मोबाइल में जो है रेडियो उपलब्ध है। आपके पास इंटरनेट नहीं है, फिर भी रेडियो रिमझिम के स्थान से 10 किलोमीटर के रेडियस में बिना इंटरनेट का भी आप रेडियो सुन सकते हैं। उससे बाहर जाइएगा तो ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं। तो आपने बताया कि टीम आई थी, आपने सकारात्मक सहयोग किया, इसके लिए एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। और जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, विशेष करके गोपालगंज के, वो भी 15 किलोमीटर के रेडियस के, उन्हें हम ध्यान दिला दें कि यह टीम जो है कभी भी आपके गांव में जा सकती है, और हमें उम्मीद है कि आप भी सकारात्मक सहयोग देंगे। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में बातें तो बहुत है, लेकिन समय का इशारा है कि अब हमें भी निकलना चाहिए, और अगले एपिसोड में एक नए विषय पर हम लोग फिर बातचीत करेंगे। आज का दिन आपका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं, उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
11: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
10: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
9: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
10: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
5: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
6: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी।

0: 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
3: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज़ महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉ रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65

0: दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिएं देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दो गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन ऑंग हाइन इन न्यू दिल्ली टुडे। Notification for biennial elections to 24 Rajya Sabha seats from 10 states to be issued this morning. Center to launch month-long Khet Bachao Abhiyan to promote judicious use of fertilizers from Raisen district in Madhya Pradesh. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari to expand his cabinet this morning with induction of 35 new ministers. Renowned singer Suman Kalyanpur passes away in Mumbai.
1: सब कुछ आधुनिक मशीनों से,
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
6: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
9: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03, 62042434-03।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन।

0: टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
8: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
8: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
6: और 90-97-61-60-02।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18-744।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
12: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
11: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
12: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।
12: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज होगी अधिसूचना जारी। 18 जून को होगा मतदान। देश भर में उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान आज से हो रहा है शुरू। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 30 आवश्यक दवाओं का मूल्य निर्धारित किया, इनमें मधुमेह और हृदय रोग सहित कई दवाएं शामिल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सारण, सिवान और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 11 जून नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। इन सीटों पर चुनाव 18 जून को कराया जाएगा। इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। इधर आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव भी 18 जून को कराए जाने की घोषणा की है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी विधान परिषद चुनाव में एनडीए सभी 10 सीटों पर विजय हासिल करेगा।
1: उम्मीदवार को लेकर जो है शीर्ष नेतृत्व में चर्चा हो रही है, उम्मीदवार तय मंथन किया जा रहा है, जल्द ही हम लोग सार्वजनिक करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने 5 सीट राज्यसभा का चुनाव जीते थे, उसी तरह 10 सीट जो है विधान परिषद का चुनाव जीतेंगे।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से कृषि बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी।
0: इधर पूरे प्रदेश में भी आज से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हो रही है। इस दौरान किसानों को कम खाद और हरित खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। वंचित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ दिलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत पटना स्थित कृषि भवन से कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले के दौरान कांवरिया पथ पर सुरक्षा और सुविधा का व्यापक इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री भागलपुर समाहरणालय के सभागार में श्रावणी मेले की तैयारी और अन्य योजना की समीक्षा बैठक में कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही विक्रमशिला सेतु पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।
3: नवम्बर को मैं स्वयं आऊंगा और स्कूल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पररी चालू हो, और दूसरा जब तक ये पुल चालू नहीं हो तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो उसको मुफ्त में इस तरफ से इस तरफ ले जाने की सारी व्यवस्था सरकार के।
0: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने आम लोगों को राहत देते हुए 30 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतें निर्धारित कर दी हैं। इन दवाओं में विटामिन D3, कैल्शियम, मधुमेह और हृदय रोग के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के साथ साथ अंग प्रत्यारोपण के बाद दी जाने वाली महत्वपूर्ण दवाएं भी शामिल हैं। प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्धारित कीमतों में वस्तु और सेवा कर यानी GST शामिल नहीं है। NPPA ने स्पष्ट किया है कि दवाओं की कीमत में GST तभी जोड़ा जा सकता है जब संबंधित कर का भुगतान सरकार को किया जा चुका हो या उसका भुगतान दे हो। सरकार का कहना है कि आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मरीजों को उचित दर पर दवाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती बनाना है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सेवानिवृत्ति की निकटता वाले 275 पुलिस कर्मियों का ऐच्छिक तबादला किया है। इन पुलिस कर्मियों में 5 इंस्पेक्टर, 176 एसआई, 42 एएसआई, 54 हवलदार और 6 सिपाही शामिल हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक के अनुसार सेवानिवृत्ति में 2 साल से कम अवधि वाले कर्मियों को गृह जिला और ऐच्छिक स्थानांतरण संबंधी आवेदनों पर विचार किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बक्सर में महाराणा प्रताप जयंती पर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने युवाओं से महाराणा प्रताप के जीवन से सीख लेने की अपील की। इस अवसर पर विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, विधायक आनंद मिश्रा, संतोष निराला और राहुल सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले सहित उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है।
1: दिनांक 1 जून उत्तर पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों में तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। अगले तीन दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
0: इधर राज्य के कुछ हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान

के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा है कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में गया जी के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक प्राप्त कर कॉमन रैंक लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। शुभम गया जी के नारदगंज ब्रह्मनी घाट के निवासी हैं। उन्होंने जेई मेंस के दोनों सत्रों में 100% प्राप्त किए थे। इस परीक्षा में 56,880 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली जोन के कबीर छिल्लर हैं, वहीं जतिन चाहर 319 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। औरंगाबाद जिला परिषद की सदस्य नीतू सिंह को 3 जून को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें अपने क्षेत्र में किए गए प्रभावी कार्यों और ग्रामीण विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आगामी 5 जून को पटना चिड़ियाघर द्वारा बच्चों के लिए चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार बच्चे अपने घर से ही प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को पर्यावरण विषय पर चित्र या पोस्टर बनाकर ऑनलाइन पोर्टल patnazoodigital@gmail.com पर अपलोड करना होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्र निर्धारित तिथि तक अपने चित्र और पोस्टर ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। पटना चिड़ियाघर ने अधिक से अधिक बच्चों से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपील की है, ताकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश व्यापक स्तर तक पहुंच सके। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस ने रामनगर थाना क्षेत्र के 3 दुकानों से भारी मात्रा में लॉटरी और कैश के साथ 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र में सोन नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि नदी में अवैध बालू उठाव के कारण बने गहरे गड्ढे में डूबने से यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी दीदारगंज घाट पर गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 1 बच्ची की मौत हो गई। दिल्ली के साकेत के सेदुला जवाब इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरने से बिहार के 2 अभियंताओं की मौत हो गई। इनमें एक अभियंता नवादा के और दूसरा मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहतास के पीयूष राज ने रिले रेस में कांस्य पदक प्राप्त किया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले बिहार के पहले एथलीट बने हैं। भारतीय पुरुष टीम में पीयूष राज के साथ सैयद कबीर, रंजीत कुमार एस, मोहम्मद अशफाक मौजूद थे। इन सभी ने 4x400 मीटर रिले टीम में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये उपलब्धि हासिल की। कटिहार में आयोजित बिहार राज्य अंडर 13 शतरंज प्रतियोगिता में सारण की मोहिनी पंडित और पटना के देवांश केसरी चैंपियन हुए। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बना है। गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए, जिसके जवाब में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने 18 ओवर में लक्ष्य को प्राप्त किया। इधर राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चयन किया गया। उन्होंने सबसे अधिक 776 रन बनाकर और

इंच कैप चीता। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान का शीर्षक है, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जर्दालू आम और सत्तू की प्रशंसा की। अखबार लिखता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आज भेजा जाएगा जर्दालू आम। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीबीएसई ने स्वीकारी ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल में सुरक्षा खामी। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार की पहली एरो सिटी होगा हरिहरनाथपुर, 11 टाउनशिप में 5 लाख को रोजगार मिलेगा। प्रभात खबर ने टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार ठेकेदार ऋषुश्री से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बढ़े बिलों से फिक्स होता था 10% कमीशन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज होगी अधिसूचना जारी, 18 जून को होगा मतदान। देश भर में उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान आज से हो रहा है शुरू। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 30 आवश्यक दवाओं का मूल्य निर्धारित किया, इनमें मधुमेह और हृदय रोग सहित कई दवाएं शामिल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सारण, सिवान और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403। सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हो बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हो बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IP

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
2: हमको गाना सुनना है।
1: गाना सुना देंगे।
2: नदिया के पार कौन दिशा में ले चला रे बरहिया।
1: फिर से बोले।
2: नदिया के पार
1: जी
2: कौन दिशा में लेके चला रे बरहिया।
1: ओके, वैसे आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम मनोज कुमार है
1: जी। और आप कहाँ से?
2: हम मुंगेर जिला के ठाकुर से बोल रहे हैं, गोबरा। तीसरा कॉल है, दो दिन हम नहीं लगा रखे बीजी थे।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रेंजन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो
1: सत श्री अकाल।
0: और ठीक ठाक बनाई?
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
0: पहले मैं बोल रहा हूँ बूटा सिंह मान नत्त रोड तलवंडी साबो डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब।
1: जी क्या हाल है आपका?
0: ठीक ठाक बने, बहुत बढ़िया, गर्मी बहुत पड़ रही है।
1: अच्छा तो अपना फरमाइश बताइए।
0: जब प्यार की चीजें होता है ये गाना ना कोई भी सुना दो।
1: किसको सुनाना चाहते हैं?
0: ये बने मेरे आगे महिंद्र भट्टी मंडी गलां तो जगदीश राय गर्ग मानसा तो सतीश मगलानी मलोड़ पर।
1: जी ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत
0: ओके ओके बनी ओके ओके।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए,
7: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
10: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
11: भरोसे वाले से लेंगे,
10: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
11: और कीमत भी।
10: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
12: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
13: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
14: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
15: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
14: आज ही आए SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
16: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
14: कॉल करें 8570-32042 पे।
17: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो
18: हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम।
18: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
3: साउंड फिल्म का गाना चला दीजिएगा।
18: कौन सा?
3: साउंड फिल्म लगन लगी।
18: अच्छा, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: थैंक यू मैम।
1: क्या नाम है आपका?
0: अनिल बात कर रहा हूँ, छोटपुर से।
1: अच्छा, क्या हाल है?
0: बस बढ़िया, अपना बताइए।
1: क्या हो रहा है फिर?
0: काम कर रहे हैं अभी।
1: अच्छा, फिर क्या फरमाइश है आपकी?
0: फरमाइश है कुमार सानू का कोई भी गीत बजा दीजिएगा।
1: आप अपने पसंद से बता दें।
0: मेरा पसंद?
1: जी,
0: मेरे पसंद से बजा दीजिएगा ना, कोई भी बजा दीजिएगा। उनका तो सारे गाना अच्छा है।
1: और ये गाना आप किस किस को सुनाना चाहते हैं?
0: सारे लिसनर्स को आपको। और सुनिए ना, ये वाला सुना दीजिएगा।
1: बताइए।
0: जो भूल ना चाहूँ, न जाने क्यों मेरे दिल पर मुझे तुम याद आते हो।
1: ओके
0: जी,
1: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97746164।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
6: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: हेलो,
7: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
8: जी नमस्कार।
7: नमस्कार, आपका नाम?
8: पचकारा से भोला राय बोलते हैं।
7: जी बोलिए, क्या हाल है?
8: ठीक तो है।
7: तो क्या फरमाइश है आपकी?
8: आप फरमाइश है जिंदगी के ना तूते लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, इसी गाना को बजाना है।
7: ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
8: आप सुनिएगा, रेडियो रिमझिम का पूरे परिवार सुनेगा, हम सुनेगा।
7: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
8: जी जी नमस्ते।

0: हेलो,
1: सलाम अलैकुम मैम।
0: सलाम अलैकुम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: अब बताइए क्या हो रहा है।
0: कुछ नहीं, बस आपसे बातें हो रही हैं। नाम
1: बताया से।
0: अच्छा, फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी।
1: हिंदी सॉन्ग है, बातों ने जादू किया
0: जी,
1: बैठा तू मेरा कोई वाला।
0: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: रेडियो रंजन सुनने वाले सभी श्रोता को।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: ठीक है।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी के दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-46651 या 97-097-06-575।
8: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
11: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
12: Now pick it up, pick it up. Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो।
15: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
17: हम किस्मत बोल रहे हैं
16: जी, क्या हाल है आपका?
17: ठीक, वाह,
16: सब
17: बहुत नचाना हो बोलता है
16: भारती।
17: ठीक,
16: बानी ना?
17: हाँ ठीक बानी।
16: फिर बताए क्या गाना सुनने के चाहे?
17: पुरान कवारी सुना दियो, चौधरी के चाल के सुना दियो।
16: अच्छा ठीक बा, सब गाना प्ले करता नहीं, सबके साथ सुनत रहे रेडियो रंजन में कॉल करे खाते आपसे धन्यवाद।
17: ठीक बा।
18: माँ के ये क्यों सब पर्दा नशी

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: मैं ललन पासवान बोल रहा हूँ।
0: जी, आपका घर कहाँ है?
1: जी, मैं ग्राम डुमरामा हुआ, जिला नालंदा, थाना सामा।
0: क्या हाल है आपका?
1: बस बढ़िया जी, अपना सुनाइए।
0: मेरा भी ठीक है। फिर क्या हो रहा है अभी?
1: बस अभी आराम कर रहे हैं दोपहर में।
0: अच्छा, फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
1: मुझे लोहा फिल्म का गाना सुनना था मैडम।
0: गाने का नाम बता दे।
1: पतरी कमर लंबे बाज आयरला हुस्न तेरा।
0: जी, गाना आपको प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो मंजिल में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87-894-18744।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
8: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
3: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
2: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
3: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
2: जहां हर निवाला कहे वाह।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: हाँ, मैं राम नरेश चौधरी बोल रहा हूँ बरगछिया से।
1: बोलिए।
2: एक तो गाना सुनना है जी।
1: कौन सा?
2: फिल्म का तो नाम है रास्ते प्यार की। गाने का बोल है ये वक्त न खो जाए बस आज ये हो जाए। एक लाइन गाऊं क्या?
1: जी बिल्कुल गाइए।

0: यही गाना को।
1: आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं।
0: हाँ गाते थे कलकत्ता में।
1: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: सबसे पहले तो आपको सारे लिसनरों को, मैं नया नया पहली बार जुड़ा हूँ जी।
1: अच्छा,
0: वैसे तो मैं जानता हूँ सभी के नाम, लेकिन एक ही बार सभी को बोल रहा हूँ, सभी सुनेंगे। गाना बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत रेखा और जितेंद्र जी पर फिल्माया गया।
1: अच्छा, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। जी जी, धन्यवाद।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: क्या सुनना है मैडम?
1: आप अपना नाम बताइए।
0: हमारा नाम मौलादीन है।
1: कहाँ से?
0: कैथोलिया से बोल रहा हूँ, सासम से कैथोलिया।
1: अच्छा, कैसे हैं?
0: ठीक है। अच्छा, तो गाना सुनवा दी।
1: कौन सा वाला बताइए?
0: बस उड़िया अब यही पुकार।
1: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: साहिबा खातून है, सनाज खातून है, गुलाब्ता खातून है, हसीना खातून है, जोड़ा खातून है, जमशेद आलम है, इरफान अली, अरमान अली, ये सब सुनना चाहते हैं।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादा पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
9: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
10: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
10: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
10: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
12: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: हेलो मैम,
14: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: जी मैं मनन कपूरा से मैं बोल रहा हूँ।
14: जी क्या हाल है आपका?
15: बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, आप कैसी हैं?
14: मैं ठीक हूँ।
15: चलिए, दूसरी बार आपसे बात हो रहा है।
14: जी
15: तो आप गाना सुनवा दीजिए कोई।
14: कौन सा गाना सुनेंगे?
15: ये हाथे मेरे साथी का गाना नफरत की दुनिया छोड़ के सुरैना मेरे यार, वो गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
14: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
15: पहले तो आपको और हमारे घर में जो जितने सुनने वाले लोग हैं और जितने जो रेडियो प्रेमी है रिमझिम का, उन लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ गाना को।
14: जी बिल्कुल, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
15: ओके, थैंक यू।

0: हेलो, बहुत
1: हेलो, नमस्ते
0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: मैडम
0: नमस्ते, आप अपना नाम बताइए।
1: जी। नेहा बोल रहा सब बोल रहे बहुत अच्छी। मैम ठीक
0: नेहा जी, क्या हाल है आपका?
1: है, अपना बताइए।
0: मेरा भी
1: अच्छा
0: ठीक है।
1: हो गया?
0: हाँ, आप कर ली?
1: हाँ, हमने नाश्ता कर लिया।
0: तो क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश यही है, कुछ लेवल पे आई चमक जाना।
0: अच्छा, तो ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: आपको सबसे पहले दो सब सुनते सबके साथ।
0: जी ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
11: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
11: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
12: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
12: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
11: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-053-69-015 पे।
13: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
12: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
11: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
12: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
11: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
12: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंपनी।
14: कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
11: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
15: Now pick it up, pick it up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up.
16: Hello.
15: Pick it up, pick it up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up.
16: Hello.
17: Jab phone ki hindi bajti hai to kehte hain hello.
18: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
20: गुड मॉर्निंग।
19: गुड मॉर्निंग जी सर, क्या नाम है आपका?
20: दिनेश कुमार।
19: कहाँ से?
20: तीसरा नारायण से।
19: जी क्या हाल है?
20: बढ़िया है, आपने बताइए।
19: मेरा भी बढ़िया है। क्या हो रहा है फिर?
20: क्या हो रहा है, घर में सोए हैं, धूप निकला है बहुत तेज।
19: जी धूप तो बहुत ज्यादा है। फिर बताए। मेरा बढ़िया है।
20: अभी बहुत देर से मेरे कॉल लगा है।
19: फिर बताएं।
20: गाना बजा दीजिए, हिंदी सॉन्ग बजा दीजिए, अपना पसंद है कोई भी।
19: अपनी पसंद बता दें, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
20: अपना पसंद है कोई भी जो आपको अच्छा लगता है। वो हिंदी हमने तो बता दी है, हिंदी बजा दीजिए, कोई भी जो अपने आप सुनते हैं वही बजा दीजिए।
19: ठीक है फिर। और ये गाना आप किसको सुनाएंगे?
20: सब लोग का डेडिकेट रहेगा, दीदी मैम को, सोनी मैम को, आपको रहेगा, डायरेक्टर सर को, सोनू सर को, पूरा रेडियो में।
19: और आप नहीं सुनिएगा?
20: नहीं तो मैं तो सुनूंगा ना।
19: ठीक है फिर, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
20: ठीक।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: नमस्कार भारती जी।
1: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
0: मेरा नाम निर्मलेश कुमार शर्मा, मैं दीना से बोल रहा हूँ।
1: जी, क्या हाल है?
0: ठीक है, अपना सुनाइए।
1: क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, बस रेडियो से गाना सुन रहा हूँ।
1: अच्छा, तो क्या फरमाइश है आपकी?
0: गाना सुन रहा है।
1: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
0: वो गाना नहीं है, चंदन पिक्चर का गाना है, कबूतरी बोले कबूतर पे।
1: जी,
0: वही गाना सुनना है।
1: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: आपको और छोटे अनिल जी है, छोटे गुड़िया जी है, निर्मला जी है, प्रवेश मनोज शर्मा है, और मेरे पपे भैया है, और सोलर बिकिन मास्टर है, और साथ में हमारा भंडारी भी सुनना है।
1: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
11: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क 99-393-65-930।
12: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे समय 9:21 हो रहे हमारी स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है, ये बातें आप सभी के बीच हर रोज़ बताई जाती है कि पुराने गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। यहाँ पे कुछ से मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो आप भी मैसेज करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। आगे मैसेज है और लिखा गया है कि किसी ने फूल से पूछा, जब तुम्हें तोड़ा गया तो दर्द नहीं हुआ। फूल ने जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द ही भूल गया। सुनो भाई, नमस्ते नमस्कार प्रणाम, कल का मेरा सॉन्ग नहीं चला, आज बजा दीजिएगा। बिल्कुल बजाने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को करते हैं शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से, और मेरा सॉन्ग है कल वाला। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है, जय माता दी। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। और भी मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो, मैसेज करती हैं सोनी गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं, मैं शिल्पी बिदबर्मा से और मुझे सॉन्ग सुनना है, लोर अखिया से बहे जैसे दरिया रे। तो बिल्कुल आपका स्वागत है, गाने का फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि विपुल सिंह आज गाना सुनना, आज गाना सुनना

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का क्या हो गया है जी। अरे कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सुनो भैया मेरा गाना बजाने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मैं रामा जी प्रसाद थावे राजन मार्केट से और सोनू जी को नमस्ते गाना सुनना है, फूल भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, एक एक करके सबकी फरमाइश प्ले हो रही है, अभी पहले गाने ही सुने हम सभी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज में लिखा गया है कि क्या बात है भाई, और मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया खिखरिया रक्सल नेपाल बॉर्डर से और कहते हैं कि जो लड़की आपको सताया और जो लड़के लड़की को सताया एक दूसरे पे प्यार आया तो अब बाकी क्या है, आगे बढ़े और एक दूसरे से शादी करें। बिल्कुल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मस्त सॉन्ग, मैसेज करती हैं निशा भारती ओझोलिया उसका गांव प्रखंड से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, अब अगली गाने की फरमाइश यहां पे पहुंचा हुआ है और मैसेज करती हैं शिल्पी बीत बर्मा से और गाने की फरमाइश करती हैं लोर अखिया से बहे जैसे दरिया रे जिंदगियाँ बेजाएं हो गई, पवन सिंह की आवाज़ में। तो सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझिम 94.4 FM पे।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
4: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमझिम 90.4 FM पे सोशल SMS फरमाइश का। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है थैंक्स बाय गुड नाइट, आपको धन्यवाद रेडियो रेमझिम सुनने के लिए और इस गाने के फरमाइश करने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है रामाजी प्रसाद जी की तरफ से थावे राजन मार्केट से और गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है इनकी तरफ से, फूल भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है, जल्दी से सुना दीजिए प्लीज़। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और यहाँ पे देख ले कुछ से मैसेज है और मैसेज में लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग पवन सिंह की आवाज़ में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हेलो सर, मैं परी गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है, बिल्कुल सुनाएंगे और लेकिन आपकी फरमाइश जो है इस कदर, तो इस गाने की फरमाइश पूरी नहीं की जाएगी, आप पुराने गाने की फरमाइश करें हम बिल्कुल पूरा करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि सुनो भैया हम भी हैं, तो बिल्कुल आपका भी मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करते हैं रोहित जी देहरादून से, कहते हैं कि टूटा हुआ आईना किसी ने तोड़ा है क्या, मोहब्बत ने किसी को छोड़ा है क्या, तुम क्या हंस रहे हो मेरी शायरी पर, तुम्हारा भी दिल किसी ने तोड़ा है क्या। सुनो भाई नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक है ना। बिल्कुल बढ़िया है, आप सभी के बीच उपस्थित हैं और कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है और बारिश इधर भी हुआ है सुबह में और बारिश जैसा ही मौसम बना हुआ है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि काहे पवन भाई अब बुझाता मैडम ज्योति जी के छोड़ला पे, अभी अपना ली फिर जिनेगिया सवर जाई। मैसेज करा था नहीं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करते हैं शिव सागर दीवाना जी, कहते हैं कि शादी भी हो गई है भाई मेरे, जिसने सताया था उसी से, जय माता दी। तो बिल्कुल अब तो झेलते रहिए और मनाते रहिए, उनकी इच्छाओं को पूरी करते रहिए, कुछ नहीं होगा, आगे एकदम आराम से ज़िंदगी कटेगी, बस उनके कहने अनुसार चलना पड़ेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हाय सर, समीर आलम जंगलिया से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज सर प्रणाम, मुझे गाना सुना दीजिए सुभाष राजा का, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को करते हैं अंकुश कुमार, अब बढ़ते हैं आगे और रामा जी की फरमाइश को प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो 90.4 FM पे।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेमशी 90.4 FM पे रामा जी की फरमाइश पे सुन रहे थे। और यहाँ पे आगे में से पहुँचा हुआ है अंकुश कुमार, सर मेरा गाना बजा दीजिए। तो बिल्कुल लेके करके सबकी फरमाइश पूरा करने का कोशिश है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश प्ले होगी। और मैसेज करने वाले विपुल सिंह जी हैं और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है अंटी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक। गाने का बोल देते हैं बांधी कमरिया से सारी की आई अब अंटी की बारी। तो चलिए आपकी बारी आ ही गई है, तो आपके भी गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। और अंकुश जी आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें, फिलहाल गाने के साथ इंजॉय करें अंटी नंबर 1।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
1: यार, कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
2: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
1: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
2: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
1: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
2: जहां हर निवाला कहे वाह।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: बिल्कुल आंटी नंबर वन, कमाल के सॉन्ग रेडियो रेमसी 90.4 FM सुन रहे हैं और सोशल लाइफ में इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे अंकुश कुमार जी की तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है। कहते हैं कि गाना बजा दीजिए आज कौन ने डैनिया, सुभाष राजा के आवाज़ में। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, लेकिन आप सभी से हम कहते हैं कि निर्गुण भजन और नाथ शरीफ जैसे गाने के फरमाइश आप लोग ना करें तो बेहतर रहेगा, ताकि जो भी श्रोतागण हमारे हैं जो छूट जाते हैं समय की कमी के कारण, उनकी फरमाइश हम सुना सकें। यहाँ पे आपकी जो गाने का फरमाइश हम प्ले करने जा रहे हैं वो 10 मिनट के करीब का है, तो हम 10 मिनट तो नहीं सुना सकते हैं, कुछ ही मिनट सुना पाएंगे, फिर अगले श्रोतागण की फरमाइश हम प्ले करेंगे। तो फिलहाल आपके गाने प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने।
9: यही दशहरा में एगो डाइन एगो लड़का के जादू टोना से मुआ देतिया, लड़कुआ के आत्मा के दुख देतरी। तो देखी वो लड़का के आत्मा वो डाइन से कैसे गुहार करता आ कहता।

कभी प्यारे गाने सुन रहे हम सभी रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे, और दशहरा के गाने हैं और इस गाने के फरमाइश करने वाले अंकुश जी हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर ये गाना हमने नहीं बोले थे। खैर कोई बात नहीं, ये भी सुपर सॉन्ग। तो बिल्कुल आपने जैसे गाने के फरमाइश किए थे उसी टाइप के हमने गाने सुना रहे हैं। और आगे गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है और मैसेज करते हैं रमेश शाह उदंत राय के बंगरा से, और कहते हैं कि हमें भी गाना सुनना है। और गाने के फरमाइश करते हैं हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। और आपकी भी फरमाइश हम पूरी करते हैं रमेश शाह जी, आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रमजीम 90.4 एफएम पे। यहाँ पे एक मैसेज भी पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि चलिए भाई सुनकर अच्छा लगा कि आप दोनों एक दूसरे को सताए और बराबर प्यार आए और शादी के बंधन में बंध गए। ऐसे ही होना चाहिए। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया खेखरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से शिव सागर दीवाना जी के लिए। और कहते हैं आगे कि ई का बजाओ आता नहीं, तो ये गाना की फरमाइश के लिए बानी एगो श्रोता गण बानी जहाँ के नाम बा अंकुश कुमार, और इनके तरफ से ये गाने के फरमाइश पहुँचल डाला। तो अभी हमने के सुना था नहीं जा, फिर आगे हम बढ़ाता नहीं, फिर अगला गाने के फरमाइश प्ले करता नहीं। हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊँ, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ।
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूं आपके अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी आप सभी के बीच हाजिर हो चुकी हूं आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस के साथ। 12:02 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और अभी से लेके शाम को 5 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे शो में जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज़ को हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आपकी आवाज़ को पहुंचाएंगे पूरी दुनिया तक। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 9857788291 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करिए और हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ। और ध्यान रहे, साथ में अपना नाम पता मेंशन करना बिल्कुल ना भूलिए। अपना नाम पता ज़रूर बताइए कि आप कौन हैं और कहां से, ताकि हमें भी पता चले, जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं उन्हें भी पता चले कि आखिर आप जुड़ कहां से रहे हैं, हमें सुन कहां से रहे हैं। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते हैं तो आपके लिए कॉल का भी माध्यम है, नंबर है 72-77-16-65-96। जी हाँ, 72-77-16-65-96 पे कॉल कर सकते हैं और अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की शो की शुरुआत करते हैं, उदित नारायण के गाने के साथ शुरू करते हैं आज के शो के। तब तक आप सभी मैसेज करिए, जब तक मैसेज पहुंचती है तब तक एंजॉय करते हैं उदित नारायण की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 12:10 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और अगर आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल। आप जिस माध्यम से चाहे शो में जुड़ सकते हैं, और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, और यहाँ वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है। लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल चाल है। साजिया जुड़ी हुई है नवादा से और गाने की फरमाइश के साथ है, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि कहाँ चले गए थे मैम। और दीनानाथ यादव हैं कुवैत से, बहुत बहुत स्वागत है। तो कहीं गए नहीं थे, कुछ काम थी जिसकी वजह से छुट्टी में थे, नहीं आ रहे थे। और यहाँ निजामुद्दीन जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं और गाने की फरमाइश के साथ है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हेलो हाय, नमस्ते नमस्कार मैडम जी, गुड आफ्टरनून। कैसी हैं मैडम जी? मैं प्रीति रैदास, विलेज लकड़ी दरगाह, डिस्ट्रिक्ट सिवान से। और आप आई बाहर आया, मुझे भी सॉन्ग सुनना है। बागों के हर फूल को अपना समझे भगवान फिल्म से गाना सुनना चाहती है, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। बहुत बहुत स्वागत है। राजू सोनी जुड़ चुके हैं हरपुर बाजार से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। धनेश मिश्रा है दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और लिख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुआ मैम, और जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ उदित नारायण जी की आवाज़ में गाना प्ले करने के लिए धन्यवाद देते हैं। इरशाद मास्टर जी जुड़ चुके हैं धनाव से, लिख रहे हैं क्या हाल चाल है मैडम जी, कई दिनों बाद प्रोग्राम शुरू हुआ है और वॉइस भेज रहा हूँ, गाना बजा दीजिए। बिल्कुल आपकी आने की फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और राकेश भारती जी बक्सर से आ गए हैं, संजय यादव दुबई से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आज की पहली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास जो पहुंचा हुआ है वो है नवादा से, साजिया जी का है। तो चलिए वॉइस भेजी हुई है, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं साजिया नवादा से, सॉन्ग सुनना है बातों के तेरी, हम भुला ना सके, हो के जुदा हम ना जुदा हो सके। सबसे पहले आपको और सुनने वाली सभी लिसनर को सुनवाना चाहती हूँ, प्लीज मैम सुना दीजिएगा।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: प्रसाद क्लिनिक।
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज है। कलामुद्दीन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र तिवारी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की फरमाइश के साथ है तो बिल्कुल फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ भी मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो जी नमस्ते मैम, मैं आपका पुराना श्रोता साधु राजा छपरा बिहार से, और मुझे भी ये गाना सुनना है दिलवाले फिल्म का, प्लीज़ सुनवा दीजिएगा कितना हसीनी चेहरा। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि सोनी मैम आज किसका किसका एक हफ्ता पूरा हो गया है, मेरा पूरा हुआ है कि नहीं बताइएगा। तो जी हाँ बिल्कुल सभी का एक सप्ताह पूरा हो चुका है, और आपका नहीं हुआ है। आपका जब एक सप्ताह पूरा होगा आप अपने गाने की फरमाइश भेजिएगा। फिलहाल यहाँ आगे बढ़ेंगे तो दिलीप कुमार ठाकुर है मिर्जापुर वाली पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत है। और आगे लिखते हैं कि ना जाने कौन सी विटामिन है मोबाइल में कि एक दिन यूज नहीं करते हैं तो सारा दिन कमजोरी से महसूस होती है। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय गुड आफ्टरनून, आप कैसी हैं। शाजदा अंसारी हैं मीरगंज से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और संजय यादव हैं गाने की फरमाइश के साथ जुड़ चुके हैं तो आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जो हर्षोनी मैम मैं करण मुर्मू हूँ और अभी मैं हैदराबाद में हूँ, सभी के साथ हूँ, किशोर मिस्त्री के साथ हूँ और प्लास्टर का काम कर रहा हूँ। और लिख रहे हैं कि धूप का नाम तो वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से ज़्यादा है। और गाने की फरमाइश के साथ है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है सऊदी अरब से, निजामुद्दीन अंसारी जी हैं और इनको सुनना है गाना। वॉइस पहुँचा हुआ है तो चलिए सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।

बजाइएगा पूरे रिमझिम परिवार और जितने सुन रहे हैं रिमझिम के उन लोगों के लिए ये गाना सुनाना चाहता हूँ। प्लीज़ इस गाना को प्ले करिए।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, निजामुद्दीन जी की फरमाइश थी सऊदी अरब से, और लिख रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया सोनी मैडम जी हमारा गाना बजाने के लिए। और आगे लिखते हैं कि सोनी जी गाना दूसरा बजा दिए, लिंक भेजे थे वो गाना नहीं बजा। तो मैं आपको बता दूँ कि आपके गाने जो है ऋषि कपूर के टॉप 20 सॉन्ग की लिंक थी, उसमें 20 गाने थे और मैं कौन सा गाना बजाऊँ समझ में नहीं आया मुझे। जो उसमें से सही लगा, जो सामने बजा, मैं उसको प्ले कर दी हूँ। अगर आपको गाना सुनना है तो आप गाने का नाम लिख के भेज दीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ आप सभी से, लिंक अगर भेज रहे हैं तो बढ़िया लिंक भेजिए जो कि गाने हो सही से, एक ही गाने का लिंक हो, या फिर गाने का नाम लिख के भेज दीजिए, मैं गाना प्ले कर दूँगी आप सभी की। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दीजिए नमस्ते, मैं प्रिया कुमारी दिल्ली से, और मेरा भी गाना बजा दीजिए मैम। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे, लेकिन आपकी फरमाइश है कहाँ, फरमाइश भेजिए, प्ले करने की पूरी कोशिश है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ मीरा शर्मा जुड़ चुकी हैं बजडीला गोपालगंज से, बहुत बहुत स्वागत है, लिख रही हैं कि मैं भी वेट कर रही हूँ, वॉइस भेजी हूँ। तो बिल्कुल आपकी बारी आने पे हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, थोड़ा इंतजार करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बने रही हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ मैसेज आया, लिख रहे हैं कि मैम मेरे साथ नाइंसाफ़ी, मेरा कब का हफ्ता पूरा हो गया है। जी हाँ, अगर आपका एक सप्ताह पूरा हो गया है तो अपनी गाने की फरमाइश जो है भेज दीजिए। दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, और यहाँ एक और मैसेज है, फाजिल नगर कृष्ण नगर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं मनीष रजाक जी, लिख रहे हैं कि मेरा मैसेज नहीं पहचान रही है क्या मैम। बिल्कुल मैं सभी का मैसेज पहचान रही हूँ, और आपका मैसेज भी शामिल कर दिया है गाने की फरमाइश है, ज़रूर प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, और शाजिया है नवादा से, लिख रहे हैं कि मैं कुछ काम में बिजी थी इसलिए गाना सुन नहीं पाई थी। तो आप जब गाने की फरमाइश कर रहे हैं तो काम में बिजी रहिए, लेकिन रेडियो चला के रखिए, क्योंकि कभी भी आपकी गाने की फरमाइश जो है आ सकती है। और यहाँ राजू सोनी है हरपुर से, लिख रहे हैं कि सोनी मैम मेरा भी गाना बजा दीजिए। बिल्कुल आपकी भी गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है इंस्टाग्राम पर, और फरमाइश करने वाले हैं धर्मेंद्र तिवारी जी, और इनको सुनना है गाना आँख से छिलका आँसू। तो चलिए धर्मेंद्र जी की फरमाइश पे एंजॉय करते हैं इनकी पसंद के गाने को, सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9779-14-86164।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो टुमजिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। सो से जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल। आप जिस माध्यम से चाहे सो में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98 527 88 291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो टिमटिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल करिए हमें 72 77 16 65 96 पे, अपनी फरमाइश के साथ जुड़िए। और बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। तो मैसेज है, देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून सोनी मैम जी, आप आई और बाहर आया, ऐसा लगता है कि आप नहीं थी तो रेडियो टिमटिम में कोई नहीं है। और मैसेज करने वाले हैं उमाशंकर मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, एक बार फिर से बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम हमारा भी आज लगा दीजिए, हम भी जुड़ गए हैं। और अमन प्रजापति है थावे से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, बहुत बहुत स्वागत है अमन जी आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो टिमटिम को। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश यहाँ हमारे पास पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से। तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से। हेलो हेलो हेलो और यहाँ हमारे पास अभी कॉल पहुँचा था लेकिन आवाज़ नहीं आया और कॉल भी कट गया। तो चलिए बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश पहुँची हुई है हमारे पास सिवान से, प्रीति रैदास जी हैं और इनको सुनना है गाना बागबान से। तो चलिए प्रीति जी आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, इन्जॉय करिए अपने गाने को, सुनते रहिए रेडियो टिमटिम 90.4 FM को।

बाग को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश थी शिवान से प्रीति रैदास जी की। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ आगे एक और मैसेज है, लिखने की नाइस सॉन्ग और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी दुबई से, और गाने की फरमाइश के साथ है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ दीपक यादव जुड़ चुके हैं मुंबई से, लिख रहे हैं कि सॉन्ग है हाय पल पल मेरी जान जाए, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून प्यारी सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बनी रही हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ आगे बढ़ेंगे, प्रीति रैदास जी हैं, लिख रहे हैं क्या हुआ मैडम जी, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, और किस बात पे है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि आप बताइए उस दिन हमारा फरमाइश रहेगा। और दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, तो आपकी फरमाइश है तो भेज दीजिए, पूरी कोशिश है हम आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है इरशाद मास्टर जी का धनाव से वॉइस पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: हाय सोनी जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव थाना नासीगंज जिला रोहतास बिहार से। सोनी जी कहाँ थी आप इतने दिनों से, हम लोग इंतजार करते रहे हैं आपका, कई दिनों से प्रोग्राम बंद था और एक गाना है दिल है बेताब मूवी का,

कलियाना बिछाना, राहों में हम दिल तो बिछाने वाले हैं। सुनने वाले हैं रोशन टेलर में हमारे नौशाद भाई, अरमान भाई, समीम हजाम, असलम हजाम और शाहिद मुखिया भी हैं, और जितने रेडियो रिमझिम के श्रोता हैं सभी को सुनवाना चाहता हूँ। ओके मैडम, बाय।

0: गाना सुनवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी, आपको और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हैं। और यहाँ मीरा जी हैं वशिला से लिख रहे हैं कि मैं भी लाइन में हूँ। बिल्कुल आप लाइन में हैं, इंतज़ार करिए थोड़ा। और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं सोनी जी, नमस्ते, क्या हाल चाल है आपका, बहुत दिनों बाद। लिख रहे हैं कि बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ है। और ईरान से सोनू जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो और भी सारे मैसेज है। लिख रहे हैं सोनी जी नमस्कार, और आप आ गई समझिए कि अच्छा संजीवनी मिल गई। आज सिर्फ एक जून है और एक जून है तो मुझे रेडियो रिमझिम से जोड़ कर रखते हैं। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, फिर भी 5 मिनट चलाना चाहिए था तो मैं आपकी गाने जो है 5 मिनट बिल्कुल चलाई थी। उसमें से मुझे लगता है कि 15 या 16 सेकेंड कम थे 5 मिनट में, क्योंकि अगर वो चलाते तो फिर अच्छा नहीं लगता आधे लाइन में छोड़ना। इसीलिए हम आपकी गाने की फरमाइश जो है वो 5 मिनट से थोड़ा कम में ही ख़त्म किया। और यहाँ बढ़ेंगे, एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि एक मेरा सॉन्ग भी सुना दीजिए। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है भेज दीजिए। उमा शंकर जी हैं दिल्ली से। और एक और यहाँ मैसेज है, कुली फिल्म से गाना सुनना है। लिख रहे हैं, हेलो जी गुड आफ्टरनून, बजाजी रोड लालगंज से नौशाद जी हैं, उनके साथ में है MD सदाब, MD निसार रिजवान और अमर टेलर के, अभिनंदन टेलर के सभी लोग हैं और उनको गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और गाने की फरमाइश है तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। और यहाँ धनेश मिश्रा जी की तरफ से वॉइस पहुँच चुका है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, राजू सोनी है हरपुर से और इनको सुनना है गाना। और गाना सुनना है, रात को आऊँगा मैं तुझे ले जाऊँगा मैं। तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए। एंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

और हमारे कुछ लिस्टनर का निर्गुण का फरमाइश पहुंचा हुआ है हमारे पास, तो मैं आप सभी से बोलूंगी कि निर्गुण का समय है 4 से 4:30 के बीच में, आप उस टाइम में निर्गुण सुन सकते हैं। ये योर वॉइस योर चॉइस का कार्यक्रम है, इसमें इंटरटेन के लिए बनाया गया, तो इसमें आप जो भी फिल्मी गाने हैं उसे फरमाइश करिए जो अच्छे गाने हैं। निर्गुण का समय है, भजन का समय है, आप उस समय में भजन सुनिए, इसमें सिर्फ गाने की फरमाइश किया करिए आप लोग।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे राजू सोनी जी की फरमाइश थी हरपुर से, और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गया, लिख रहे हैं थैंक यू गाना बजाने के लिए। बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और मनीष रजाक हैं, लिख रहे हैं कि सोनी जी हमारा भी गाना बजा दीजिए, खाना खाने का समय हो जाएगा, लंच भी करना है, फिर काम पर भी जाना है। तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, थोड़ा इंतजार करिए। और यहाँ नौशाद अली जुड़ चुके हैं मोतिहारी जिला से, और लिख रहे हैं कि हमें लग रहा था कि सोनी जी शायद हम लोगों को छोड़कर दिव्या जी के जैसे चली गई और आपकी जगह कोई दूसरी भारतीय जी आई हुई थी नहीं बल्कि अभी भी है हमारे बीच, और हमको लग रहा था शायद अभी चली गई है हम लोगों के बिना, बोले दिव्या जी जैसी। प्लीज़ आप रिमझिम में रहें, आपकी आवाज़ रिमझिम को नाज है, आपका आवाज़ बहुत ही सुंदर लगता है हम लोगों को और बहुत ही अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम सुनने में। जी हाँ बिल्कुल, और कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से छोड़ के गए नहीं थे बल्कि छुट्टी में थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, नौशाद जी बने रही हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी जी नमस्कार, राधे राधे, मुझे भी गाना सुनना है, सुना दीजिए मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है। गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं, नाम मेंशन नहीं किया है तो नाम ज़रूर मेंशन करिए आप कौन है और कहाँ से। और सुजीत कुमार जी हैं लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है, फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्कार मैम, कैसी हैं आप, और बहुत दिनों के बाद प्रोग्राम में आए हैं, हम प्रोग्राम से जुड़ गए हैं, गाना सुनना चाहते हैं, छोड़ेंगे ना तेरा साथ वो साथ ही मरते दम तक, यही गाना सुनना चाहते हैं। राजेंद्र कुमार गुप्ता है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज बहुत दिनों बाद आपसे बात हुआ है मेरे यहाँ, और नाम मेंशन नहीं है, नाम ज़रूर बताइए आप कौन है और कहाँ से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और विमल जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है विमल जी, आपका भी बनी रही है हमारे साथ में। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से पहुँचा हुआ है तो प्ले करेंगे, कॉल के माध्यम से बात करते हैं कौन है और कहाँ से सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: निर्मला कुमारी जाती
0: हूँ जी, कैसी हैं निर्मला जी?
1: अच्छी, अपना बताइए।
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ।
1: क्या हो रहा
0: है? बस आप लोगों की फरमाइश से पूरी कर रहे हैं, क्या करेंगे अभी।
1: हाँ, सुन रहे हैं।
0: जी बिल्कुल सुनाएंगे, क्या कर रही थी आप बताइए।
1: कॉल लगा रही।
0: उसके अलावा
1: थी।
0: तो गाना कौन सा सुनना है बता दीजिए।
1: चाहूंगा मैं तुझे हरदम, तू मेरी जिंदगी, मांगू रब से तेरी खुशियाँ, तू मेरी बंदगी, यही सॉन्ग।
0: और सुनवाना भी है? चलिए तो प्ले कर दिया गाना।
1: ठीक है मैम।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल की।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

आज ऐप में कम साउंड आ रहा है। ओके, देखते हैं कि कहाँ दिक्कत है। और मैसेज करने वाले हैं धनीश मिश्रा दिल्ली से, और जो भी हमारे लिसनर ऐप से सुन रहे हैं, आप सभी बताइए कि आप सभी के ऐप में भी आवाज़ कम आ रहा है। और धनीश जी, आप एक बार सब बंद करके फिर से ऑन करिए ऐप को, हो सकता है कि सही हो जाए। और यहाँ एक और मैसेज है कि मैम हमारा भी गाना है, बजा दीजिए। बिल्कुल, आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम इस समय बाइक चला रहे हैं इसलिए मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, और प्रोग्राम अच्छा चल रहा है लेकिन आज भोजपुरी गाना क्यों नहीं बज रहा है। तो भोजपुरी गाना जब फरमाइश पहुँचेगा तभी बजेगा ना। और मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से। तो प्रमुख जी, ये बताइए कि आप बाइक चलाते चलाते रेडियो रंजन को सुन रहे हैं, तो कैसे सुन रहे हैं? हेडफोन लगा के अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा देर नहीं सुनिए, वही अच्छा होगा। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है दुबई से संजय यादव जी का, तो चलिए सुनते हैं इनकी फरमाइश की। गाना दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे, अलका याग्निक की आवाज़ में और विनोद राठौर की आवाज़ में। काफ़ी बढ़िया गाना, इंजॉय करते हैं संजय यादव जी की फरमाइश पे हम सभी सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

और यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास और सबका कहना यही है कि ऐप पे अच्छा आवाज़ आ रहा है। तो दिनेश जी, एक बार आप अपना ऐप बंद करके फिर से चालू करिए, हो सकता है कि साउंड सही हो जाए। और साउंड सही हो रहा है तो फिर मुझे बताइए।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी काफी बढ़िया गाने की फरमाइश सुन रहे थे और गाने की फरमाइश करने वाले थे संजय यादव जी दुबई से, और गाना काफी लंबा था और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गए हैं। लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए, नाइस सॉन्ग। और यहाँ मुस्तफ़ा जी जुड़ चुके हैं सऊदी से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, कैसे हैं मुस्तफ़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी हमारे गाँव का, शायद लिखना चाहते हैं कि हमारा गाना नहीं बजेगा क्या। बिल्कुल आपका भी गाना बजेगा। और मैसेज करने वाले हैं लालगंज मिर्जापुर बजाजी रोड लालगंज से नौशाद जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका, बिल्कुल आपका भी गाना बजेगा। और यहाँ कोलकाता से जुड़ चुके हैं और नाम नहीं बताया है, नाम जरूर बताइए आप कौन है, संजय कुमार जी है कोलकाता से, बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी। और लिख रहे हैं कि ऐसा लगता है गाना में कैसे साथ साथ गा रहे हैं हो। और इन्होंने भी कहा है कि ऐप पर साउंड सही है, तो बिल्कुल। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ राकेश भारती जी हैं, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है होई प्यार ना दोबारा हो, नीलकमल की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपकी भी गाने की फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए साथ में। और एक यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम मेरा गाना भी बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि एक जैसे दोस्त सारे नहीं होते, एक जैसे दोस्त सारे नहीं होते, कुछ हमारे होके भी हमारे नहीं होते, आपसे दोस्ती करने के बाद महसूस हुआ कौन कहता है कि तारे जमीन पर नहीं होते। क्या बात है धनेश जी। और लिख रहे हैं कि आज सोनी मैम हमें लगता है कि मूड में है और ऐसे ही गाते रहिए। जी हाँ बिल्कुल गाते रहेंगे, और गाना वैसा होना चाहिए, गाना कुछ ऐसा आता है कि आदमी बेसुरा आदमी भी गाने लगता है साथ में, तो ऐसा ही समझिए गाना ही ऐसा था। और यहाँ राम विलास जी जुड़ चुके हैं बलमपुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लिख रहे हैं कि मैं भी एक गाना सुनना चाहता हूँ, ओढ़नी प्यार करे लागल पुरवैया से, गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आग लगा दिया आपने झकास सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका सुजीत कुमार जी मिर्जापुर लालगंज से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, एक बार फिर से बनी रही है हमारे साथ में। और अगली फरमाइश के साथ बढ़ेंगे, और यहाँ अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। और यहाँ कॉल रिसीव करते हैं, कॉल कट गया, तो चलिए अगली फरमाइश व्हाट्सएप के माध्यम से ही लेते हैं, और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। और फरमाइश करने वाले हैं मनीष प्रसाद जी फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।

0: 90.4 FM रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। 1:27 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज लग रहा है पहली बार रेडियो बज रहा है और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर जी दिल्ली से। और एक यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्कार, मुझे भी गाना सुनना है और गाना है दिल लगैनी जितना बार धोखा पैनी उतना बार। पवन सिंह की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी हैं और इनको सुनना है गाना। लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ आगे बढ़ेंगे, एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, एमडी महमूद जो जुड़ चुके हैं केरला से और गाने की फरमाइश के साथ है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ बढ़ेंगे, दिनेश मिश्रा लिख रहे हैं कि प्रिया जी का भी गाना बजा दीजिए भोजपुरी में। जी हाँ, प्रिया जी का भी गाना बजाएंगे लेकिन उनका गाना गुम हो गया है, एक बार बोलिए मैसेज करने के लिए और कहाँ नंबर पहचान में नहीं आ रहा है उनका। और यहाँ मैसेज है बस्टीला से, मीरा शर्मा जी है, बोल रही हैं कि मेरा भी गाना है। जी हाँ बिल्कुल आपके भी गाने हैं। और एक यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सजते रहे खुशियों की महफिल, सजते रहे खुशियों की महफिल, हर खुशियाँ सुहानी रहे, आप ज़िंदगी में इतना खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। क्या बात है अनिल जी हैं चोटपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ नवीन जी जुड़ चुके हैं जामतारा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए, बिल्कुल आपकी हाजिरी लग चुकी है। नहीं मैं जामतारा से, और लिख रहे हैं कि हाजिरी लगा दीजिए तो हाजिरी आपकी लग चुकी है। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि नज़र लग जाती है, नज़र लग जाती है जताया न कर, इश्क एक राज है बताया न कर, लाख समझाया शक करता है जमाना, जब तू पास से गुजरे तो मुस्कुराया न कर। क्या बात है। और नाम तो मेंशन नहीं है, सिर्फ मैसेज पहुंचा हुआ है तो नाम ज़रूर बताइए आप कौन है और कहां से। लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं लाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बने रहिए हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक और यहां मैसेज पहुँचा हुआ है अभी अभी और लिख रहे हैं कि क्या हुआ मैडम जी गाना बजा दीजिए, बिल्कुल पूरी कोशिश है आप सभी की फरमाइश प्ले करने की। जैसे जैसे हमारे पास फरमाइश पहुंचा हुआ है वैसे वैसे हम प्ले कर रहे हैं सबकी गाने की फरमाइश। और यहाँ अली खान कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश भी प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है हमारे पास। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: हम छाता से बोल रहे हैं रामाजी प्रसाद
0: जी, का हाल चल बा रामा जी?
1: हाल चाल बाबा जी, घर हम नहीं क्या करी।
0: अच्छा अच्छा, का करी, काम रहे कुछ?
1: काम रहे, गाना सुना दे
0: जी। बिल्कुल सुना दे, बता दी कौन गाना सुने के बाद।
1: बनवारी हो बलमा हमरो गवार,
0: बनवारी हो बलमा हमरो गवार।
1: हाँ।
0: फिल्म का गाना है पुराना?
1: हाँ, बलम प्रदेश से ऐसा गाना है कि लागे नहीं सुता में गाना है, मैंने एक दिन में कहा कोनो।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: और सुनाए के भी बा?
1: जितना रेडियो सुनता सब कोई या दिमाग के मैसेज आए लोग वो सुनिए हम।
0: हाँ। चलिए।
1: आज एक दिन हम स्टार मॉडल बारे मनोज का यो सुनिए।
0: अच्छा, तो क्या होता रहे अभी? हाँ, पहला बार उठे नहीं आता, कट गया कॉल। तो गाना प्ले कर दे बनी।
1: नमस्ते,
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करनी।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289225567 या 9779146164।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। 1:38 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिल खुश हो गया भाई, क्या गाना था। और मैसेज करने वाला है मुस्तफ़ा जी सऊदी से। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि ये है प्रिया का। और प्रिया जी जुड़ी हुई हैं दिल्ली से और इनको सुनना है गाना, और काफ़ी पहले ही इनका मैसेज आया था, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए। और यहाँ अगली गाने की फरमाइश से पहले एक और यहाँ मैसेज है, और लिख रहे हैं कि मेरी मौत के बाद मेरा सर माँ के गोद में रखना, मेरी मौत के बाद मेरा सर माँ के गोद में रखना, यमराज भी कहे कहाँ से ले जाऊँ इसे, ये मरा ही स्वर्ग में है। और इस मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं सचिन कुशवाहा जी पुणे से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सनी मैडम जी, और गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो और भी सारे मैसेज है, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है हम प्ले करेंगे। राकेश भारती जी जुड़े हुए हैं बक्सर से, और इनको सुनना है गाना हुई प्यार ना दोबारा हो। तो चलिए राकेश जी आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, इन्जॉय करिए, और आप सभी भी इन्जॉय करिए राकेश भारती जी की फरमाइश पे, नीलकमल के आवाज़ में ये सैड सॉन्ग हुई प्यार ना दोबारा हो।
1: अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आँख के आंसू अपनी आँख से निकाल सकते।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे राकेश भारती जी की फरमाइश थी बक्सर से और लिख रहे हैं थैंक यू गाना बजाने के लिए। और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से और मुझे भी गाना सुनना है। बिल्कुल गाना सुनना है, प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ उमा शंकर जी हैं लिख रहे हैं कि ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग, और ये पहले गाने के लिए बोल रहे हैं जो कि फरमाइश थी रामा शंकर जी की तरफ से। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी मैम हम लाइन में बानी, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल। और दिलीप कुमार ठाकुर है मिर्जापुर वाली पंजाब से, बिल्कुल आप पे भी ध्यान है। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है बशीला से मीरा शर्मा जी है और वॉइस पहुँचा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: हेलो सोनी मैम, गुड आफ्टरनून और ऑल रेडियो फैंस को भी गुड आफ्टरनून। और मैं आपकी दोस्त मीरा शर्मा बस्टीला गोपालगंज से, और मैं भी आज लंबे टाइम बाद जुड़ गई हूँ अपने पसंदीदा शो योर वॉइस योर चॉइस में आपके साथ। तो कैसी है जनाब बताइएगा? और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और ऐसा कोई बात नहीं कि मैं नहीं जुड़ पाती हूँ तो मैं रेडियो नहीं सुनती हूँ, हालाँकि मैं हर दिन रेडियो पर बनी रहती हूँ और प्रोग्राम सुनती हूँ। और चलिए, और मुझे भी आज एक सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल है मुझे तुमसे है इतने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किए क्या किया तेरा नाम लिया। यही सॉन्ग प्ले कीजिएगा, सुनवाना चाहूंगी सबसे पहले सोनी मैम आपको एंड ऑल लिसनर्स को भी। तो प्ले कीजिएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके बाय।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
0: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
0: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

104.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और हाँ, मैसेज की बात करें तो मैसेज का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। काफ़ी सारे मैसेज है फरमाइश से पहुंच रही है। और संजय यादव जी हैं दुबई से, लिख रहे हैं कि अच्छा सॉन्ग मैम। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है सचिन कुशवाहा है पुणे से, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, बने रहिए साथ में सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है मिर्जापुटम वाली पंजाब से दिलीप कुमार जी की, और इनको सुनना है गाना। तो चलिए प्ले करते हैं इनकी यानी कि फरमाइश को और सुनते हैं हम सभी दिलीप कुमार जी की फरमाइश पे इनके पसंद का गाना कोरे कोरे सपने, सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जा पटुमाले पंजाब से, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया लिख रहे हैं कि धन्यवाद सोनी मैम गाना बजाने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है इंस्टाग्राम पे, और हाँ विकास कुमार जी जुड़े हुए हैं और इनको भी सुनना है गाना, तो बिल्कुल आपके गाने की भी फरमाइश प्ले करेंगे। और यहाँ नीतीश कुमार जुड़े हुए हैं यूपी से, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। फिलहाल एंजॉय करते हैं विकास कुमार जी की फरमाइश को, जो कि जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, और इनको सुनना है गाना प्यार के कागज पे दिल की कलम से। तो चलिए विकास जी की फरमाइश पे एंजॉय करते हैं इनके पसंद के गाने को, सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

0: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो लिख रहा है कि क्या हुआ मैम, एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि प्यार के कागज पे दिल के कलम से पहली बार सलाम लिखा, वेरी नाइस सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं मनीष रजाक जी, फाजिल नगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून सोनी जी, कैसी हैं आप, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, रोहित हैं देहरादून से। और लिख रहे हैं कि प्यार के कागज़ पे दिल की कलम से नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और इस गाने को इंजॉय किया मुस्तफ़ा जी ने सऊदी से। और बढ़ेंगे आगे यहाँ एक और मैसेज है, विष्णु कुमार जुड़ चुके हैं वीके फास्ट फूड सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से और गाने की फरमाइश के साथ है। तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, आपकी फरमाइश जो है दोपहर समाचार के बाद पूरा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक और यहाँ मैसेज है, गुलाम हुसैन जी है लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल यहाँ आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से। तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से। हेलो,
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: जी
0: नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: प्रदीप कुमार शर्मा बोल रहे हैं, गोपालगंज जिला से, गांव जिला है।
0: जी जी, क्या हाल चाल है बिमलेश जी?
1: ठीक है, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। हेलो, मैं चॉइस में आप नहीं थे?
0: जी हाँ, छुट्टी में थे इसलिए नहीं थे। तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
1: भाभी जी, वो कॉल नहीं करके रिकॉर्डिंग करती है।
0: जी जी, भाभी जी।

0: कि कॉल रिसीव करने जाइए कोई और वो कट के दूसरा कॉल आ जाता है, तो फिर वो कॉल रिसीव कर लेते हैं।
1: जी,
0: तब जिसका किस्मत अच्छा है उसका कॉल रिसीव हो जाता है, यहाँ तो लक की बात है। तो बता दीजिए अब गाना कौन सा सुनना है आपको,
1: क्या हिंदी गाना फरमाइश करें या भोजपुरी गाना बजेगा?
0: कोई भी गाना फरमाइश कर सकते हैं, बस किसी को परेशानी नहीं हो गाना सुन के।
1: जी, गाना सुनना है। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल पर आदी वाले कलियों न बिछाना, राहों में हम दिल को बिछाने वाले।
0: ये गाना तो अभी रिपीट हो जाएगा शो में।
1: जी,
0: अगर गाना चेंज कर देते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि शो में चल चुका है ये गाना पहले ही।
1: जी, तो दिल देता है रो रो के दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे,
0: ये वाला सैड सॉन्ग।
1: जी
0: जी जी, ये प्ले कर देंगे।
1: ठीक है,
0: और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
1: जी, अनिल जी है छोटपुर से, और प्रदेश से मनोज शर्मा जी हैं, और गुड़िया जी है, निर्मला जी है, और कितने लोग सुनने वाले हैं मिक्सर, सब लोग को क्या सुनना है और आपको तो नहीं है।
0: चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना।
1: ओके
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए।

और इसी गाने के बाद हम बढ़ेंगे दोपहर समाचार के तरफ और फिर आप सभी से मुलाकात होगी दोपहर समाचार के बाद। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। आप सभी से मिलते हैं दोपहर समाचार के बाद।

0: शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज, अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताएं, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफिन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा, मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
3: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
4: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
5: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
4: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
6: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमत में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रूपये होगी। मुंबई में 43.50 रूपये की वृद्धि के साथ नई कीमत 3067.50 रुपये होगी। कोलकाता में 53.50 रुपये की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3255.50 रुपये होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
8: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
9: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
12: रेडियो रिमझिम,
11: सुनो दिल से।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 2:46 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और 5 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। अगर आप भी शो से जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 9857288291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए, रेडियो रिमझिम के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ डायरेक्ट मैसेज करिए अपने गाने की फरमाइश को सुनिए या फिर कॉल कर सकते हैं हमें 7277166696 पे। और जब भी गाने की फरमाइश करिए, अच्छे गाने की फरमाइश करिए। गाना ऐसा होना चाहिए जिस गाने को सुन के किसी को कोई परेशानी ना नहीं हो। और भोजपुरी गाने की फरमाइश कर रहे हैं तो गाना अश्लील बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप गाना नहीं सुने हैं तो उस गाने की फरमाइश बिल्कुल नहीं करिए। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि सोनी जी हमारा भी फरमाइश है, गाना चला दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं राजेंद्र गुप्ता जी, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून वंस अगैन। और मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। एक और यहाँ मैसेज है, अनिरुद्ध अलबेला जुड़े हुए हैं मुबारकपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की फरमाइश के साथ है, सुनना चाहते हैं कि पहली बार जुड़े हैं और गाना सुना दिए। और गाना सुनना है वो है अलबेला हजारों में, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बने रही हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ सचिन कुशवाहा है पुणे से, लिख रहे हैं कि सनी मैडम से हमारा भी गाना है। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमारा भी गाना है, बिल्कुल आपके गाने हैं तो प्ले करेंगे। और यहाँ बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है सचिन कुशवाहा पुणे से जुड़े हुए हैं और उनको सुनना है गाना, तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं। एंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे सिस्टीन कुशवाहा जी की फरमाइश थी पुणे से। और बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, और लिख रहे हैं कि अब भोजपुरी गाना बाजत बा, अब हल्का फुल्का मजा आवे आवे लागल बा। और मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से, तो चलिए अच्छा बात है, इंजॉय करिए। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, मनीष पांडे जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि हाय हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है डॉक्टर अमोद कुशवाहा है कुशीनगर जय छपरा से, और इनको भी सुनना है गाना जाम वो है जो भर के छलकता है, गाने की फरमाइश के साथ है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास कॉल के माध्यम से पहुँचा हुआ है, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। हेलो
1: जी,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: जी
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: पीयूष कुमार।
0: पीयूष
1: जी,
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं पीयूष जी?
1: मैं गोपालगंज से बात कर रहा हूँ।
0: गोपालगंज में कहाँ से?
1: गोपालगंज में बरौली।
0: अच्छा, तो गाना कौन सा सुनना है आज पीयूष जी आपको?
1: दिल्ली सरकार ही ले ला।
0: और सुनवाना भी है?
1: जी जी।
0: तो प्ले कर दिए गाना आपकी?
1: जी प्ले कीजिएगा।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में कॉल किए।
1: जी
0: जी, इंजॉय करिए अपने गाने को।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल,
6: वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं हाय मैम मुझे भी गाना सुनना है, और गाना सुनवा दीजिए। बिल्कुल आपका गाना की फरमाइश है, प्ले करेंगे। नाम जरूर बताइए आप कौन है और कहाँ से। और रमेश कुमार जी हैं लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिखे कि सुनी जी हमारा गाना कब बजेगा नहीं बजाइएगा का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी भी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम गोपालगंज आए हुए हैं, और सर कहाँ है। तो सर तो ऑफिस में ही थे, लेकिन अभी जस्ट कुछ देर हुआ बाहर गए हुए हैं, और पता नहीं कब तक ऑफिस पे आएंगे। और बढ़ेंगे आगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि का बात बा, आज तो फिर दिल्ली सरकार हिले लागल, नाइस चॉइस ब्रो, दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग। और प्रमुख जी हैं लुधियाना पंजाब से। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम गुड आफ्टरनून, और मैं ऋषिकेश बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और ये भी जुड़े हुए हैं लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। अगली फरमाइश से पहले एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी हम भी जुड़ चुके हैं, अफ्ताब आलम है मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। लिख रहे हैं कि आपके वहाँ का मौसम कैसा है बताइएगा जरूर। बिल्कुल

और हमारे यहाँ का मौसम अभी काफ़ी कड़ाके वाली धूप हुई है और हवा का बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, बाहर काफ़ी गर्मी है। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से सुजीत कुमार जी का, और इनको सुनना है गाना मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, इंजॉय करिए आप सभी सुजीत जी की फरमाइश पे इनके पसंद के गाने को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी सुजीत कुमार जी की और इनको सुना था गाना और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गया, लिख रहे हैं कि थैंक यू गाना बजाने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे।

0: और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफी सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमारा भी गाना है, प्ले कर दीजिए। और यहाँ प्रमुख जी हैं लुधियाना पंजाब से, लिख रहे हैं कि कोई हमें भी बताए कि मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, नाइस सॉन्ग। और हम आपको बता दें कि मोहब्बत वो किताब है जिसे पढ़ने में सारी जिंदगी गुजर जाती है, समझने में फिर भी समझ नहीं आती है, यही है मोहब्बत। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ विष्णु कुमार जी हैं सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से, लिख रहे हैं कि हमारा भी गाना है, बजा दीजिए। बिल्कुल सबकी गाने एक एक करके फरमाइश जो है पूरा कर रहे हैं और आपकी गाने की फरमाइश है उसे भी प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है।
1: हेलो सोनी मैम, मुझे एक गाना सुनना है, गाना का बोल है जो जाम से पीता हूँ, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है का गाना जरूर सुना दीजिएगा सोनी मैम।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करेंगे तो सबका कहना है कि मैडम जी मेरा गाना मेरा गाना, और सभी को अपने गाने सुनने हैं। तो बिल्कुल आप सभी की गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे और बातों को रोकेंगे और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, नीतीश कुमार जी जुड़े हुए हैं लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, और इनको सुनना है गाना पवन सिंह की आवाज़ में दिल लगैनी जितना बे। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, गाने की फरमाइश करने वाले थे लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से नीतीश कुमार जी। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम इस शो का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है क्या? बिल्कुल नहीं, शो का समय 1 घंटा नहीं बढ़ा है, जितना था उतना ही है। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी। और आगे लिखते हैं कि दूरिया से फर्क नहीं पड़ता, दूरियों से फर्क नहीं पड़ता, ना ही बात तो दिलों की, दूरियों से फर्क पड़ता नहीं बात तो दिलों की, नजदीकियों से होती है दोस्ती तो कुछ आप जैसी से, वरना मुलाकात तो जाने कितनों से होती है। क्या बात है। और मैसेज करने वाले हैं धनीश जी दिल्ली से। बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है और लिख रहे हैं कि हाय, नाम मेंशन नहीं है, नाम जरूर बताइए आप कौन है और कहाँ से। और वारिस खान जुड़े हुए हैं कतर से, बहुत बहुत स्वागत है वारिस जी आपका भी। और लिख रहे हैं कि एक लड़का ने शायराना अंदाज में आपका जो हुस्न है क्या हुस्न होगा, आपका जो हुस्न है क्या हुस्न होगा, ताज का आपका जो हुस्न है क्या हुस्न होगा, आज आप है बेहद मगर हमने किया है आपका, लड़की ने भी नाम बताया और आल का।

0: और लिखते हैं अल्लाह की आदत फूलों की जान, कहते हैं अल्लाह की अदा और फूलों की जान, कहते हैं जनाब इस हुस्न को कहते हैं मुस्कान, कहते हैं मुस्कान। वारिश खान जी है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बने रहिए हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिलरुबा जे मिलल, बेवफा मिलल सुपर सॉन्ग और मैसेज करने वाले हैं संतोष कुमार पटेल जी सूरत से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ बढ़ेंगे आगे और भी सारे मैसेज है। MD महमूद जी जुड़ चुके हैं केरला से और गाने की फरमाइश है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और वॉइस पहुंचा हुआ है तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: हाय हेलो, कैसी हो सोनी मैम? अच्छी हो? और आज मुझे भी एक गाने का फरमाइश है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, यही पैसा तो अपनों से चूर करे है। मैं MD महमूद केरला से, और ये गाना डेडिकेट सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को, रेडियो रिमझिम और लालगंज बजाजी रोड अभिनंदन टेलर के पूरी टीम को। ओके,
2: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी और तहार मोती। अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहां के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका

0: बोले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करो तानी तो तू इनके लगे काहे ने कुचल जा। आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
1: आँखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सुर योर वॉइस योर चॉइस में। 3:33 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और आधे घंटे मैं आप सभी के साथ हूँ। और यहाँ बढ़ेंगे आगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ और लिख रहे हैं आपका जो प्रोग्राम था कुछ टाइम से बंद था। जी हाँ, कुछ टाइम से बंद था किसी कारणवश और अभी से कंटिन्यू हो चुका है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो डेली जुड़ सकते हैं शो में। और मैसेज करने वाले हैं वारिश खान सी कतर से और आगे लिखते हैं कि लगी है दिल पे चोट दिखा नहीं सकते, लगी है दिल पे चोट दिखा नहीं सकते, भुलाना भी चाहता हूँ भुला नहीं सकता। मोहब्बत का अंजाम यही होता है, जिसको दिल से छोड़ो उसको पा नहीं सकता, दिल को जिसे दिल से चाहो उसको पा नहीं सकता। और इस मैसेज साथ है वारिश खान जी। बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि हेलो माय चॉइस, आप चलाएंगी या भारती मैम, वो तो फरमाइश पूरा नहीं करती हैं। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर जी दिल्ली से। तो उमा शंकर जी आप बताइए कि आपकी रिकॉर्डिंग कब हुई थी और कब रिकॉर्ड हुआ है कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है गाने की फरमाइश जो है नहीं पूरा हुआ है, ज़रूर बताइए। और हम देखते हैं कि आपकी फरमाइश जो है क्यों नहीं पूरा हुआ है। और मुझे लगता है कि वो सबकी फरमाइशें पूरा करती हैं। हो सकता है कि अगर आपकी फरमाइश नहीं पूरा हुई होगी तो कुछ दिक्कत होगा। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैम मेरा गाना नहीं बजेगा क्या। बिल्कुल बजेगा आपका भी गाना। और अली खान जी हैं कुशीनगर से और इनको गाना सुनना है सोनू निगम की आवाज़ में पैसे की पहचान। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। और अगली फरमाइश जो है वो लेंगे कॉल के माध्यम से, फिलहाल एंजॉय करते हैं अली अख्तर जी की फरमाइश पे पैसे की पहचान गाने को।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे अली खान जी की फरमाइश थी कुशीनगर से, और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि तेरी मुस्कान का जादू कुछ ऐसा छा जाता है, तेरी मुस्कान का जादू कुछ ऐसा छा जाता है, हर उदास पल भी खुशी में बदल जाता है। तू सामने हो तो लगता है दुनिया हंसी है, तेरा नाम आते ही दिल मुस्कुरा जाता है। और आगे लिखते हैं कि मैंने खुद लिखा है, इसे पढ़ दीजिएगा। बिल्कुल पढ़ दिया। और मैसेज करने वाले हैं लुधियाना पंजाब से प्रमुख जी, और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है हमारे पास। हेलो
1: जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जी में।
1: मैं भूमि बंदोत्सानी से।
0: जी, क्या हाल चाल है भूमि जी?
1: हमारा बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। क्या हो रहा था?
1: बस कपड़ा सिल रहे थे।
0: अच्छा, अपना या फिर कस्टमर का?
1: जी, बहन का सिल रहे थे।
0: अच्छा, ऐसे ही कि घर में कोई शादी वादी पड़ने वाला है?
1: नहीं, शादी तो बीत गया, अब आएगा शादी।
0: अच्छा, अब आएगा। चलिए फिर तो बढ़िया है। और सब बताइए, घर परिवार सभी लोग कैसे हैं?
1: हाँ, घर पे सभी लोग अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल मस्त बिंदास आप सभी के सामने हूँ।
1: बहुत दिन एक बार प्रोग्राम चालू हुआ है।
0: जी जी, बहुत दिन बाद हुआ है, काफी लंबे छुट्टी में थे इसीलिए।
1: प्रोग्राम नहीं चलता तो अच्छा नहीं लगता है।
0: बात तो सही है, मेरा भी मन नहीं लग रहा था आप लोगों के बिना। तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: राधा तेरी चुंदी और राधा तेरा छल ये वाला सुना दीजिए।
0: और सुनवाना भी है
1: जी? सबसे पहले तो आप ही सुनिए, फिर मम्मी सुनेगी, और जितने रेडियो रिंगिंग पे लिसनर सुन रहे हैं सभी सुनेंगे।
0: चलिए, तो प्ले कर दिया है गाना आपकी
1: जी। धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए। आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।

4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और यहाँ 3:48 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और 12 मिनट समय है आप सभी के साथ और यहाँ फरमाइशें जो है अभी भी काफ़ी सारे हैं तो सबकी फरमाइशें तो पूरी नहीं हो सकती है, माफ़ करिएगा। और बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है अनिरुद्ध अलबेला है छपरा बिहार से जुड़े हुए और इनको सुनना है गाना वो है अलबेला हजारों में तो चलिए आपकी फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं अपने गाने की फरमाइश को एंजॉय करिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंचे थे छपरा बिहार से अनुराधा अलवेला जी की, और इन्होंने गाना सुन लिया है। बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है और लिख रहे हैं कि हाय क्या शायरी है। ना दिन का पता ना रात का, एक जवाब दे खुदा मेरी बात का, कितने दिन हो गए उस यार से बिछड़े हुए, जरा ये बता दे कौन सा दिन रखा है हमारी मुलाकात का। और इस मैसेज को भेजने वाले हैं वारिस खान जी कतर से, और आगे लिखते हैं कि रोते रोते यूँ रात गुजर जाती है, रोते रोते यूँ रात गुजर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े, और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। MD नौशाद जी हैं, MD सदाब जी हैं, और साथ में निशार रिजवान अभिनंदन टेलर के सभी लोग हैं, और इन लोगों की तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है। तो चलिए अगली फरमाइश जो है, और कुल्ली फिल्म का गाना सुनना है हज को जाने वालों, तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं। इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 94.4 FM को।
1: अच्छी बात है,

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, यानी कि फरमाइश करने वाले थे नौशाद जी, और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गया, लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए। और सभी लोग साथ में सुन रहे हैं, बढ़िया। आगे यहाँ आगे मैसेज पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं कि ये शायरी उन भाई साहब के लिए जिन्होंने अभी शायरी भेजा था, और लिख रहे हैं कि पहली मुलाकात का वो असर आज भी है। पहली मुलाकात का वो असर आज भी है, दिल में बसी तेरी खबर आज भी है। वक्त गुजर गया मगर ये एहसास नहीं बदला, तेरी यादों का सफर आज भी है। और मैसेज करने वाले हैं लुधियाना पंजाब से प्रमुख जी, और बढ़ेंगे आगे आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। और अगली और आखिरी फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है प्रमुख जी का लुधियाना पंजाब से। तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले कर रहे हैं, और इसी फरमाइश के साथ आप सभी दीजिए आज की शो से मुझे जाने की इजाज़त। और जिनकी भी फरमाइश आज पूरी नहीं हुई है वो सभी लोग इस गाने को एंजॉय करें, और कल फिर इसी समय इसी शो में जुड़िएगा अपने गाने की फरमाइश के साथ। और कल पूरी कोशिश रहेगी कि हम आप सभी की गाने की फरमाइश है जो आज छूट गए हैं वो कल पूरा करें। और फिर मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए रखिए अपने सेहत का ख्याल और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। फिर मिलते हैं, नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
3: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
4: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
4: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
4: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
3: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
4: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम,
6: सुनो दिल से।

कि दुनिया माया के बाजार बा, यहाँ केहू के केहू नहीं खे। भाई बहन बाप माई सगे संबंधी ई झूठो के एगो रिश्ता नाता बा कहे खातिर, सभे आइल अकेले बा और जाई अकेले।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलर।

0: जैसी ढेर सारी कंपनियां, साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
10: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
9: संपर्क 99-393-65-930।
12: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160602।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे ने कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए। आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97

0: लिए
1: अब लगा भी लीजिए।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746 64।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99393965930।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्ते लागू।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97,714,86,164।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
9: Now pick your phone up.
10: Hello?
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello?
9: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: हम थागर से बोलते हैं, दामाजी प्रसाद
1: जी। क्या हाल है आपका?
2: हमारा हाल ठीक है, अपना हाल बताइए।
1: मेरा भी ठीक है।
2: दिन तक गुमसुम हुआ है
1: जी।
2: आप गाना सुनवाइए।
1: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
2: मैं उठा ले जाऊंगा तुझे डोली में, देखते रह जाएगी तुम्हारी सखिया।
1: अच्छा, फिर ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
2: जितना लोग सुनता सब कोई अदालत चौधरी बारे हमारे सार लोग यहाँ नियो बारे हम बने बहुत लोग बा।
1: ठीक है,
2: नमस्ते।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
2: नमस्ते।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: प्रणाम मैम।
0: नमस्ते, क्या हाल है
1: मैम? ठीक है, अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है,
1: बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: ठीक है, फिर अपना नाम बताएं।
1: साफी नाज।
0: और आप कहाँ से बोल रही हैं?
1: सिवान जिला पड़ता है लकड़ी दर्गा।
0: अच्छा, क्या हो रहा है अभी?
1: कुछ नहीं मैम, आपसे बात हो।
0: तो फिर बताइए, क्या फरमाइश है आपकी? कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप?
1: जी मैम, बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ, ऐसा ही कोई हिंदी सॉन्ग है।
0: जी
1: जी वही वाला बता दीजिए।
0: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: रेडियो जो सुनते हैं।
0: ओके।
1: और हरिशाबा को और नासिम को सब सुनती है, सब मेरी सिस्टर।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रिंगिंग में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम कॉल उठाने के लिए।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399 66999।

0: 9 4 6।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
2: और 9097-6160-02।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: Now pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
8: Pick it up, pick it up. Now pick your phone up.
9: Hello.
10: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो,
13: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
12: गुड आफ्टरनून मैम।
13: गुड आफ्टरनून, आपका क्या नाम है?
12: मेरा अलिफा नाम है।
13: क्या हाल है?
12: ठीक है, अपना बताइए।
13: मेरा भी ठीक है। कहाँ से हैं आप?
12: मैं सिवान जिले से एक छोटे से गांव से बोल रही हूँ, लकड़ी दरगाह।
13: अच्छा, क्या कर रही हैं?
12: मैं अभी पढ़ाई कर रही थी।
13: किस क्लास में पढ़ती हैं?
12: मैं 10th में।
13: तो क्या फरमाइश है आपकी?
12: यस, आप कैसी हैं मैम?
13: मैं ठीक हूँ। अपना फरमाइश बता दीजिए।
12: मेरा फरमाइश है तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया।
13: आगे भी गाइए थोड़ा सा।
12: मुझको भावे गलिया तेरी गलिया, ऐसे गाना है ना?
13: बहुत अच्छा गा लेती हैं।
12: शुक्रिया मैम।
13: ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
12: मेरी सिस्टर है ना, उन लोगों को और रेडियो रिमझिम सभी दोस्तों को।
13: ठीक है, गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी, प्रणाम
0: प्रणाम, क्या नाम है आपका?
1: जी, नास्रीन आज।
0: क्या हाल है?
1: जी ठीक है, आप अपना बताइए मैम,
0: मेरा भी ठीक है।
1: क्या हो रहा है?
0: अभी तो आपसे बात हो रहा है, आप कहाँ से हैं?
1: छत्रपुर।
0: जी, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मेरी फरमाइश है, मैंने तेरा नाम दिल सुनती है, ये वाला गाना है ना भाई?
0: अच्छा, ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: जी मेरी अपनी है, सबों की लव सब भी, गुलशन सब भी, मेरे जीजू है, सबको सुनाना चाहेंगे और रेडियो रिंग के सभी सदस्य।
0: ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की

0: में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
11: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
11: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: हेलो।

0: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिन्यू के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। हेलो,
1: बोलिए मैम।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम है सोनम।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: गोपालगंज से।
0: क्या हाल है आपका?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। फिर बताएं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: ये फरमाइश है,

0: बहुत अच्छा गा लेती हैं आप।
1: शुक्रिया मैम, शुक्रिया, कितना अच्छा मैंने तारीफ कर दी।
0: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: मेरे जीजू हैं, राजू जीजू, साहेब जीजू, इमरान जीजू, लड्डू जीजू, और मेरी अप्पी है सबो अप्पी, सबनम अप्पी, फलक अप्पी, गुलशन अप्पी, नासिन अप्पी, साबिन अप्पी, शीफा, वजर, आयशा, सनाया, मेरी अम्मी, अब्बू,
0: बताइए,
1: मेरे भाईजान हैं और मेरी खाला की लड़की है लोग सब।
0: अच्छा ठीक है फिर,
1: और आपको भी सुनाना चाहते हैं।
0: धन्यवाद,
1: आवाज बहुत अच्छा है मैम।
0: थैंक यू, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: शुक्रिया मैम, शुक्रिया, शुक्रिया।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। क्या नाम है आपका? क्या
1: मेरा नाम आयशा है। ठीक
0: हाल है?
1: है, अपना बताइए।
0: कहाँ से हैं आप?
1: मैं बोल रही हूँ मुजफ्फरपुर से। अभी
0: क्या हो रहा है अभी? तो
1: कुछ नहीं, आपसे बात हो रहा है। मेरी
0: क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश है, बंजारे को घर।
0: अच्छा, ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: मेरे रेडियो रिमझिम के सभी सदस्य को और मेरे जीजू लोगों को, जैसे कि सफी अहमद जीजू, मैनुद्दीन जीजू, इमरान जीजू, फलक
0: जी
1: अपी, सबनम अपी, चाहत अपी, साबिन अपी, नासिम अपी, आयशा, फजर, सनाया, इनाया, इस्माइल, इस्माइल भाईजान को, और सनाया, इनाया, सैम,
0: जी
1: अब्बास, हमजा, अना, हमजू, हमजू को भी, हमाद को भी, और नाजिया अपी, और साबिना अपी, नासिन अपी, गुलशन अपी।
0: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायकोट,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
7: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
10: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
11: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
13: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: रेडियो रिमझिम, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज में कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
16: हमको चांद का पार्क गाना सुनना है।
15: जी, गाना आपको सुनाया जाएगा, पहले अपना नाम बता दें।
16: संजय शाह
15: और
16: ग्राम फुली डुमर, जिला बांका, बिहार से बोल रहे हैं।
15: कैसे हैं आप?
16: ठीक है।
15: क्या हो रहा है अभी?
16: अभी तो यही दुकान पर है।
15: अच्छा,
16: दुकाने चलाते हैं।
15: फिर बताइए,
16: आपका जो है सोच सुनते हैं हम बराबर।
15: अच्छा जी,
16: ट्राई करते करते तब अभी लगा।
15: लगता है थोड़ा वक्त।
16: हाँ,
15: लाते रहते हैं ना इसीलिए।
16: हाँ, चांद के पार चलो।
15: जी, और ये गाना किसको सुनाना चाहते हैं?
16: आपको और पूरे श्रोतागण को।
15: बिल्कुल, गाना सुना दिया जाएगा। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
16: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
1: नमस्कार, क्या हाल है?
0: कुछ नहीं मैम, बस बैठे थे मैम आपका शो का इंतजार करते हुए मैम, तो शो तो स्टार्ट हो गया मैम। तो आज एक फरवाई था फिल्म है कुछ कुछ होता है, और गाने के बोल है तुझे याद न मेरी आई।
1: अच्छा।
0: यही गाना सुनना चाहते हैं और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं मैम।
1: जी ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।
0: ओके,
1: रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके मैम, धन्यवाद मैम, थैंक यू।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9852374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
1: और 9097-6160-02।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए। आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9953-69015 पे।
6: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439-45-651 या 9797-06-575।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
13: Jab phone din din bajte hai to kehte hai hello.
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: हेलो,
15: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
16: जी मैम नमस्ते, सुमित कुमार बात कर रहा हूँ मैम, जामनगर गुजरात।
15: जी क्या हाल है आपका?
16: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे रेडियो रंजन सुनते हुए मैम।
15: जी फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
16: जी आज सुनवा दीजिएगा फिल्म दिलवाले का, जीता था जिसके लिए, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते हैं, कभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं। आप कौन सा मैम बात कर रहे हैं? मैं
15: भारती बोल रही हूँ।
16: जी मैम
15: ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
16: ओके मैम, बाय।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
1: हेलो
0: के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: हेलो मैम, नमस्कार। गुड
0: नमस्कार,
1: गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून।
1: बोलिए, कैसा है?
0: ठीक है, आप अपना बताइए।
1: मेरा नाम श्री भगवान सिंह है।
0: बोलिए।
1: मैं दोहा कटर से बोल रहा हूँ।
0: जी,
1: मेरा आज वेडिंग एनिवर्सरी है, तो एक गाना सुना है, तो आपका पसंद था, अच्छा गाना सुना दिए।
0: अभी बता दें आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
1: हम गाना सुनना चाहेंगे वेडिंग एनिवर्सरी पर, कोई अच्छा गाना, जैसे शादी मुबारक हो।
0: जी,
1: वह गाना भी तैयार।
0: गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: हाँ, हमारे सुनने वाले हैं, हमारे पास काशी प्रसाद, नागराज, चंदन भाई, दिनेश कुमार, सचिन कुमार, कमल सिंह, शंकु अमीषा, और पूरे जो रिम के दर्शक हैं उन सब को लिए। ओके
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिम में। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करे 87894 18744।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
10: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
10: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 पर।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
12: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
13: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
12: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
13: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
14: ठक ठक।
15: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
16: अच्छा मिला ही नहीं।
15: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
15: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
17: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
18: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Now pick your phone up.
19: Hello. जब फोन गिनने बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: गाना सुनने के बाद महेश्वर कालीकुम से बोला था।
3: अच्छा,
6: तो सब कुशल मंगल कही?
3: सब बढ़िया बा, अपन बताए।
6: ठीक है बा, हम से तो पहाड़ इलाका में रह, गर्मी कम बा।
3: नहीं, तो बहुत ज्यादा गर्मी बा।
6: हाँ, बिहार तो गर्मी रहे करेगा, हमने की 6 महीना पर जाए तो रह ना सकल, कितना भी फैन चले, पंखा चले ना, तभी भी मच्छर मारने के नाम ना, इतना गर्मी फलेगी। हमने के यहाँ पर बन तो एक कमर के जा रहा है।
9: अच्छा ये जो तो मतलब भयंकर अभी गर्मी पड़ता
6: है। हाँ, पर 25-26 साल से रहा पानी हुआ पर हुआ पर मन ना
9: बढ़िया पर ठंडी में पानी अच्छा।
6: हाँ हाँ गाँव में जाने मन ना चले इतना गर्मी से परेशान होकर जाए। दो दिन चार दिन जाए भाग जाए। हमें तो समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के बगल में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ा है। तब तो सुना दे मैडम प्रणाम
9: ठीक बा। गाना प्ले करता ही सुनत रहे सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद
6: जी मैडम।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: सत श्रीकाल जी।
0: क्या नाम है आपका?
1: बूटा सिंह मानपणी, नत्त रोड तलमंडी साहब, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब से।
0: ओके, क्या हाल है आपका?
1: बहुत बढ़िया जी, तुम दसो ठीक हो? मैनु अज गाना सुना दो तुम जी। संगम फिल्म का गाना है जी, डबली वाले डबली।
0: जी, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: अपने दोस्त है महेंद्र भट्टी मंडी कलां तो, जगदीश राय गर्ग मानसा तो, जगजीत मट्टू मौड़ कलां तो, मकीर घड़ी साज गोनिया ने तो, सतीश मगलानी मलोर तो, ये दोस्त अपने।
0: जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भेने, धन्यवाद।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
12: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
13: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
12: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
13: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
12: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
14: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
14: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
14: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
15: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
16: Now pick it up,
17: hello.
16: Now pick your phone up,
17: hello.
16: Pick it up,
17: hello.
16: Now pick your phone up,
17: hello.
18: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं
19: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
17: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
20: जी नमस्ते बालवीर सुंदर पुर।
17: जी नमस्कार, क्या हो रहा है फिर?
20: अभी तक कुछ ही नहीं हो रहा है, इतना गर्मी है ना।
17: गर्मी तो बढ़ते जा रही है, अभी गर्मी और बढ़ेगी।
20: जी जी,
17: फिर गर्मी में बच के रहे, ख्याल रखे अपना।
20: जी जी, अभी पेड़ के नीचे है।
17: अच्छा, फिर बताए क्या गाना सुनना चाहते हैं?
20: फरमाइश सही है जीता का, जिसके लिए दीवार फिल्म का।
17: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहेंगे?
20: अमन राहुल।
17: अच्छा ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
20: नमस्ते।
17: नमस्कार।

0: हेलो। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। थोड़ा तेज बोल सकते हैं, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी
1: गाना सुनना है। हिंदी
0: बताएं, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना कोई भी सुनाती है।
0: ये फरमाइश तो है, तो आप खुद की पसंद से बता दें।
1: कोई भी गाना, दिल जा रहे मूवी के गाना।
0: अच्छा, और कौन सा सॉन्ग इसका?
1: वो कोई भी गाना सुना, दिल जा रहे मूवी।
0: जी, फिर गाना और ये किसको सुनाना चाहेंगे आप?
1: अच्छा,
0: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: इक्कीस वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास दसवीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए,
2: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 9939965930।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955-97644।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

हमेशा की तरह विक्रम ने वैताल को वृक्ष से उतारा, अपने वश में किया और कंधे पर लाद कर चल पड़ा। और हमेशा की तरह वैताल ने विक्रम को एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी थी चंदमपुर गांव की। चंदमपुर में एक गरीब बुढ़िया रहती थी, जिसका इकलौता जवान बेटा था दगड़ू। न काम का न काज का, न मन अनाज का। बुढ़िया बेचारी लोगों के ब्याह शादी के जोड़े पर गोटा किनारी लगा लगा कर अपना और अपने लाडले का पेट पालती थी। और लाडला दगड़ू, वो तो भाई जब देखो लेट कर सपने देख रहा होता।

0: लिया, लूट लिया।
1: अरे किसने लूट लिया, किसको लूट लिया?
0: एक दूल्हा दुल्हन को डाकुओं ने लूट लिया।
1: हाय राम, फूट गई मेरी किस्मत जब तुझ जैसा निकम्मा बेटा मेरे घर पैदा हुआ। जब देखो तब मार धार लूट फाट की बातें सोचता रहता है। अरे कलमू है, कभी तो किसी के बारे में भला सोच लिया कर।
0: अम्मा मैं तो सबका भला ही सोचता हूँ, लेकिन क्या करूँ, भगवान ने लोगों को बुद्धि कम दी है तो इसमें मेरा क्या दोष है। मैं तो जब भी सच बोलता हूँ लोगों को बुरा लग जाता है।
2: दगड़ू की अम्मा, हमारा जोड़ा तैयार है।
3: आओ चौधरी, बस थोड़ी सी किनारी लगानी बाकी है, आप बैठो मैं अभी लगाई देती
4: हूँ। अच्छा। चाची ये जोड़ा किसके लिए बनवा रही हो?
2: अपनी बहू के लिए। आज मेरा बेटा अपनी बहू को अपने ससुराल से ला रहा है, ये जोड़ा मैं अपनी बहू को भेज दूंगी।
0: चाची तेरा बेटा घोड़े पे सवार होके आ रहा है?
2: हाँ।
0: और रास्ते में जंगल पड़ता है?
2: सो तो पड़ता है।
0: तो चाची इस जोड़े को भूल जा और जल्दी से किसी वैद्य को बुला के ला मलम पट्टी करने के लिए।
2: क्यों?
0: क्योंकि जंगल में तेरे बहू और बेटे को डाकू लूट लेंगे, उनके गहने जेवर कपड़े सब ले जाएंगे और उनकी इतनी मरम्मत करेंगे, इतनी मरम्मत करेंगे कि उनकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। हाँ
1: काली जुबान वाले, अगर मेरे बेटे बहू को कुछ हुआ तो मैं भरे बाजार में तुझे जूते मार मार कर तेरा सर गंजा कर दूंगी।
2: नहीं नहीं ठकुराई, ये तो भी बच्चा है।
1: छी, कैसी गंदी जुबान दी है भगवान ने, कभी किसी का भला नहीं सोचता, जब देखो सबकी बर्बादी की भविष्यवाणी करता रहता है। चोरा तैयार करके भेज देना, समझी?
0: देखा अम्मा, सच कितना कड़वा लगता है। अभी तो मुझे गालियां दे रही है ना, थोड़ी देर बाद रोती पीटती आएगी कि दगड़ू तू सच कहता था, हम लुट के बर्बाद हो गए।
1: चुप कर दगड़ू, तू कभी मुझे चैन की सांस नहीं लेने देगा, एक से एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा मेरे लिए। इससे तो अच्छा था कि तू पैदा ही ना हुआ होता, पैदा ही ना हुआ होता।
0: अम्मा,
5: अम्मा।

0: जुबान वाले, मैं तेरा भी वैसा ही हाल करूंगी जैसा मेरे बेटे बहू का किया था।
1: ये जरूर किसी चोर डाकू से मिला हुआ है, वरना उसे कैसे पता था कि मेरे बेटे बहू को डाकू लूट लेंगे। मारो मारो इसको। सपना देखा था। अरे मैं तेरी ऐसी मरम्मत करूंगी, ऐसी मरम्मत करूंगी कि तुझे तो क्या, तेरे सारे खानदान को कोई सपना नहीं आएगा। मारो अरे पीटो उसको, छोड़ो उसको।
2: अति सुंदर घर बनाया, बधाई हो आपको।
3: दया है आप जैसे महान भावों की।
4: वो तो ठीक है भाई, जोधरा इन लड्डू तो खिलाओ।
5: अवश्य अवश्य, लो भी लो, तुम भी लो, मैं तो सारे गांव में लड्डू बांटूंगी। चलो भाई।

0: ठीक है, चल गया, चल गया, जल गया, जल गया।
1: अब किसको जला रहा है तू? किसको जलाकर राख कर देगा?
0: किसी का घर जल जाएगा अम्मा। चाची ने मेरे सर पे इतने जूते मारे थे और कहा था कि मैं जीवन में कभी सपना नहीं देखूंगा, लेकिन मैंने सपना देखा।
1: बेटे।
0: अरे मौसी आओ आओ, ये क्या है? लड्डू? ये कैसे लड्डू?
1: हमने नया घर बनाया है, आज गृह प्रवेश है, लो मुंह मीठा करो।
0: वो जो घर चल रहा था उसमें मुझे चौधरी की शक्ल दिखाई दी थी, हो ना हो वो चौधरी का ही घर है। मौसी तुमने अपने घर में नए पर्दे लगाए हैं?
1: हाँ।
0: और वहां पर एक दिया है?
1: हाँ है।
0: पहले लड्डू ले लूं, बाद में तो जूते ही पड़ने। मौसी तू बधाइयां मत ले, थोड़ी देर में तेरा घर जल जाएगा।
1: दगड़ू।
0: अम्मा दगड़ू दगड़ू करने से कोई फायदा नहीं, मौसी तेरा सब कुछ जल के सवा हो जाएगा।
1: आग लगे तेरी जुबान को? अरे तेरी शक्ल गंदी है तो बात तो अच्छी कर लिया कर।
0: मौसी मेरा सपना कभी छूटा नहीं होता। हाँ
2: चल चौधरी चल, मैं पहले कहती थी इनके घर में आना गुनाह है, इनको लड्डू मत दे। चल
0: अरे मत दो, तो हमें लड्डू ना देने से तुम्हारा घर जलने से बच नहीं जाएगा। हाँ अम्मा मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता ना, नहीं होता।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: अरे ए चाची।

0: हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर M.A. अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: मत रो अम्मा, सच बोलने पर तो दुनिया वालों ने बड़े बड़े महापुरुषों का जुलूस निकाल दिया, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। लेकिन अम्मा ऐसा क्यों होता, मैंने तो सच बोला है, मुझे तो इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मिला क्या, गंदे अंडे टमाटर।
1: तूने जब भी भविष्यवाणी की है दूसरों की तबाही के बारे में ही भविष्यवाणी की है, और ऐसा सच भी किस काम का जो दूसरों को दुख दे, तकलीफ दे, और फिर तेरे कहने का ढंग भी तो गलत है। दूसरों की तबाही पर तू हंसता है, कहने का भी एक ढंग होता है, लेकिन तुम तो सीधा ही।
0: ठीक है अम्मा, ठीक है, अब मैं ऐसे ही कहूंगा। अम्मा, बहुत दर्द हो रही, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, मेरी खटिया का है।

0: मेरी खटिया खड़ी करती, अब मैं सपने कहाँ देखूंगा?
1: सपने अब घनघोर जंगल में जाकर लेना, क्योंकि गांव

बेचारा दगड़ू बड़ा हैरान था वो कि सच इतना कड़वा क्यों होता है। वो दिशाहीन जंगल में भटकने लगा भूखा प्यासा। जब थक कर हार गया तो एक घने वृक्ष की छाया में लेट गया। लेटते ही गहरी नींद सो गया और सोते ही फिर एक सपने में खो गया।

0: सच्चे पुरुष उठ उठ उठ जाग जा, देख तो तुम्हारे पास कौन आया है।
1: अरे महाराज, आप महाराज हैं, आपके चरण कहाँ? मुझे पता था आप जरूर आएंगे महाराज।
2: अरे ये क्या कर रहे हो? महाराज मैं नहीं, मैं तो उनका सेवक हूँ, महाराज जी तो वो हैं।
1: महाराज महाराज महाराज आप आ गए। मैंने अभी अभी सपने में देखा था कि आप मुझे अपनी शरण में लेने आ रहे हैं महाराज। मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता महाराज।
3: कौन हो तुम?
1: दुनिया का सताया हुआ पुरुष दगड़ू, अब तो आप ही का आसरा है महाराज।
3: क्या कर सकते हो तुम?
1: सपने देख सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं कर सकता महाराज। आप जो आज्ञा देंगे उसे अपना धर्म अपना कर्तव्य समझ के निभाऊंगा महाराज।
3: ठीक है, हमारे महल में पहरेदार की जगह खाली है, लेकिन तुम्हें सारी रात जागकर महल का पहरा देना होगा।
1: हाँ महाराज हाँ, मैं सारी रात उल्लू की तरह जाग के आपकी सेवा करूंगा। मुझे एक मौका दीजिए महाराज।

0: नया पहरेदार अपनी जिम्मेदारी प्रति सजग लगता है। अगर इसी ईमानदारी से काम करता रहा तो अगले मास हम उसका वेतन बढ़ा देंगे। हाँ रानी, कल सूर्य उदय से पहले हमें जगा देना, एक जरूरी काम से हमें सोनपुर जाना है।
1: जा क्या महाराज?
2: जागते रहो।
3: अरे दिए गुल हो गए, मतलब महाराज सो गए। अगर महाराज सो गए तो प्रजा भी सो जानी चाहिए।

0: क्यों महाराज कहीं जा रहे हैं क्या?
1: जी हाँ सोनपुर जा रहे हैं।
2: तो बस आ गया महाराज का अंत समय, कर लो चंदन की लकड़ियां इकट्ठी उनकी चिता जलाने के लिए।
1: क्या
3: तूने जो भी भविष्यवाणी की है दूसरों की तबाही के बारे में ही भविष्यवाणी की है, और ऐसा सच भी किस काम का जो दूसरों को दुख दे तकलीफ दे और फिर तेरे कहने का ढंग भी तो गलत है।
2: नहीं नहीं माँ, मैं तेरी बात पर अमल करूंगा।
0: महाराज की जय हो। महाराज गुस्ताखी की क्षमा चाहता हूं, अगर आप अपनी यात्रा स्थगित कर दें तो ये प्रजा के हित में होगा महाराज।
4: किंतु हम एक बहुत ही आवश्यक काम से।
2: महाराज जान है तो जहान है, सोनपुर में भूकंप आने वाला है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा महाराज।
4: तुम्हें कैसे पता?
5: उसे पता हो या ना हो किंतु ये अब शकुन है महाराज। नहीं नहीं मैं आपको कदाचित नहीं जाने दूंगी, आइए मेरे साथ आइए। नहीं नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगी।
2: शुक्र है महाराज बच गए।

0: एक बहुत बुरी सूचना है महाराज, सोनपुर में भारी भूकंप आया है, सारा नगर भूमिग्रस्त हो गया और सारे नगरवासी मर गए हैं।
1: शुक्र है कि हम वहां नहीं गए, बच गए।
2: अगर आप अपनी यात्रा स्थगित कर दें तो ये प्रजा के हित में होगा महाराज। जान है तो जहान है, सोनपुर में भूकंप आने वाला है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा महाराज।
1: दगड़ों को हमारे सामने दरबार में उपस्थित किया जाए।
0: जो आज्ञा महाराज।
2: महाराज की जय हो। महाराज ने दगड़ों को बुलाया, दगड़ों हाजिर।
1: दगड़ों, तुम्हारी बात सच निकली, सोनपुर में भूकंप आया है और वहां की तमाम जनता मारी गई है।
2: महाराज, मैंने आपसे कहा था ना कि वहां मत जाइएगा।
1: हाँ, लेकिन तुम्हें इस बात का पता कैसे चला?
2: महाराज, मैंने सपना देखा था और महाराज मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता। हाँ
1: दगड़ू, चलो तुम्हारा इनाम।
2: महाराज की जय हो।
1: और अब इसी समय हम तुम्हें नौकरी से निकाल देते हैं, ले जाओ इसे।
3: इतनी कहानी सुनाकर वैताल रुक गया और हंसकर विक्रम से पूछा, बता विक्रम, राजा ने दगड़ू को क्यों इनाम दिया और उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया?
4: जल्दी बता वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
5: हाँ। सुन बेटा, राजा ने उसे हीरों का हार इसलिए इनाम में दिया क्योंकि उसने अपने सपने के अनुसार ये बताकर कि सोनपुर में भूकंप आने वाला है राजा की जान बचाई, और नौकरी से निकाल इसलिए दिया क्योंकि वो सारी रात जागकर पहरा देने के बजाय सोता हुआ सपने देख रहा था। राजा को एहसास हुआ कि दगड़ू अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार नहीं था, इसलिए उसने सपनों वाले दगड़ू को नौकरी से निकाल दिया।
4: कहा तो ठीक, मगर कहा क्यों? अरे तू बोला और मैं चला, मैं ये चला।
6: मैं तुझे नहीं।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
6: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधान परिषद की रिक्त 10 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 8 जून तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान। और आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में कल से सहयोग शिविर की हो रही है शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 10 सीटों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आज जिन 10 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हुई है उनमें से 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई 1 सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून तक निर्धारित है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस और सुनील कुमार सिंह समेत 9 विधान पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। पटना में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने सभी परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग की भी समीक्षा बैठक की।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समाज कल्याण विभाग की बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में सुनिश्चित रूप से भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं की तकनीकी माध्यम से निगरानी करने और बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने और आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभाग की सभी योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। समाचार कक्ष से नंदिनी।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि अभियान 1 महीने तक चलेगा।
3: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
4: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
3: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: इस अवसर पर पटना के कृषि भवन में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसानों को रासायनिक खाद की जगह हरित खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।
5: हम सब बिहारी माँ भारती के संतान इस अभियान को पर्यावरण के लिए, आने वाले भावी पीढ़ी के लिए हम खेत बचाने का अभियान में सम्मिलित हों। हर व्यक्ति अपने जमीन के 1/4 में कम से कम प्राकृतिक खेती करे, ये हमने आह्वान किया है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कंप्यूटर आधारित माध्यम से कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर पुनर्परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा रद्द होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से कई चुनौतियों का सामना कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में कल से सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। कल ही राज्य के पंचायतों में भी सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। सहयोग शिविर से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में सरकारी बसों से सफर आज से महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में 10-15% तक की बढ़ोतरी की है। सिटी बसों के किराए में भी 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 53.50 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब पटना में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414.50 रूपये में मिलेगा। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने गर्मी को देखते हुए आमजनों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और सभी खराब पड़े चापाकलों को 15 जून तक चालू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में पेयजल संकट के समाधान और चापाकलों की मरम्मति को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। श्री अमृत ने भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में संवेदनशील मामलों को देखते हुए जिलाधिकारियों को विशेष रूप से चौकस रहने के निर्देश दिए। उन्होंने ज्ञान भारत मिशन के तहत चल रहे सर्वेक्षण की प्रगति की भी समीक्षा की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। जेईई एडवांस 2026 में कयाची के शुभम कुमार ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों, अभिभावक और कड़ी मेहनत को दिया है।
1: टॉप करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक है कि हम जितना कर सकते हैं, जितना भी हमने पढ़ा हो, जितना भी हमारी पोटेंशियल है, उसको एटलीस्ट 80-90% रिफ्लेक्ट करना अपने फाइनल पेपर में, आई थिंक वही काफी होता है। बिकॉज अगर अपने आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब हम जितना कर सकते हैं हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी हो, तो उसके लिए तो आई थिंक अपना विल पावर पूरा होना चाहिए कि अगर करना है तो करना है, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभम कुमार को इस सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। केंद्रीय मंत्री और गया के सांसद जीतन राम मांझी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने शुभम कुमार को बिहार का गौरव बताते हुए इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद और पटना समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हुई है। उत्तरी भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की खबर है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान के हुसैनगंज में सबसे अधिक 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
0: जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की 21 जून को पटना में बैठक होगी। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि बैठक का मुख्य एजेंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार के निर्वाचन पर परिषद की औपचारिक मुहर लगना है।
3: राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर 25 जनवरी को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। इस निर्वाचन की औपचारिक पुष्टि के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक आगामी 21 जून को पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित किया जा रहा है। 21 जून को अन्य कई बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।
0: नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में रवि संगम की पुस्तक रामायण परिपथ बिहार का लोकार्पण किया। इस शोध पुस्तक में प्रभु श्री राम की बिहार यात्रा से जुड़े स्थलों का जिक्र है। इस अवसर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार, राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिहार संग्रहालय की ओर से पटना में कल से 7 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को टेराकोटा कला, मुखौटा निर्माण कला तथा कहानी लेखन कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप का उद्घाटन महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह करेंगे। खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार आज कटिहार के विकास भवन में 20 सूत्री और आपदा की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदा से मरने वाले लोगों के परिजनों को राहत अनुदान राशि अब स्थानीय जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में ही दी जाए। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड में अपराधियों ने कुख्यात गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि गोविंद शर्मा के फ्लैट में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मुजफ्फरपुर के तत्कालीन मेयर समीर कुमार और जमीन कारोबारी आशुतोष शाही हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 83 लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद के जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का उद्घाटन किया। बिहार के एथलीट पीयूष राज ने 22वीं जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। चीन के हांगकांग में आयोजित 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य के रूप में पीयूष ने यह उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीयूष राज की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए उन्हें बधाई दी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सोनपुर के रितेश रंजन ने स्वर्ण पदक जीता है। पटना में संपन्न राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शेखपुरा के खिलाड़ियों ने 21 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधान परिषद की रिक्त 10 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 8 जून तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान। और आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में कल से सहयोग शिविर की हो रही है शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम,
6: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 7070-7563 या 7070-7542 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
12: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दे श्री कृष्णा साड़ी को।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादा पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
4: और 90-97-61-60-02।
7: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
11: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइंस तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
3: और अब एसपी ज्वेलर्स का

0: नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
1: कॉल करें 85070-32042 पे।
2: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
0: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
9: तो देर मत कीजिए,
0: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
10: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
4: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
7: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट वरिष्ठ तकनीकी सहायक शर्करा प्रौद्योगिकी के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जिन्हें चयन होने की स्थिति में तुरंत कार्यमुक्त किया जा सकता है। आवेदन उचित माध्यम से भेजे जाने चाहिए और उसके साथ ये दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। बायोडाटा 2 प्रतियों में, पिछले 5 वर्षों के ACR, नियुक्ता संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। पात्र उम्मीदवारों के आवेदन इस पते पर पहुंचने चाहिए। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कल्याणपुर कानपुर 208017। पद का विवरण, पात्रता शर्तों आदि के लिए देखिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की वेबसाइट nsi.gov.in। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरी तमिलनाडु इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अवर श्रेणी लिपिक, सिविलियन मोटर ड्राइवर सामान्य ग्रेड, बहुकार्य कर्मचारी आशुलिपिक ग्रेड 2, पर्यवेक्षक नेटवर्किंग, नेटवर्क प्रशासक, हार्डवेयर प्रशासक, लाइनमैन, नाव निर्माता और तकनीकी परिचारक मुद्रण मशीन ऑपरेटर। कुल पदों की संख्या 78 है। आरक्षित पदों की जानकारी, योग्यता, वेतनमान और अन्य शर्तों के लिए देखिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की वेबसाइट www.ids.nic.in। भारत सरकार का उपक्रम बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है उप प्रबंधक विपणन, सहायक प्रबंधक वाणिज्यिक, उप प्रबंधक सहायक प्रबंधक फीको प्रकार्यात्मक, मुख्य प्रचालन अधिकारी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, अधिकारी प्रचालन, अधिकारी ट्रैवल, कनिष्ठ अधिकारी ट्रैवल यूनिट हेल्थ, कनिष्ठ अधिकारी आयात प्रचालन, कनिष्ठ अधिकारी विद्युत और रखरखाव, अधिकारी उत्पादन, सहायक प्रबंधक बिक्री और विपणन, अधिकारी वाणिज्यिक, अधिकारी लेखा और वित्त, अधिकारी बिक्री और विपणन तथा कनिष्ठ अधिकारी लेखा और वित्त। इन सभी पदों के लिए एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। केवल इन पदों को छोड़कर ये पद हैं: अधिकारी वाणिज्यिक, अधिकारी लेखा एवं वित्त और अधिकारी बिक्री एवं विपणन, जिनके लिए पदों की संख्या 3 है। विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड, आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, आयु में छूट तथा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए देखिए बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट www.bamarlorry.com/careers/current openings। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
8: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847-34468 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
14: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
12: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
14: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
12: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
7: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
8: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
6: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
9: I am confident that this comprehensive agreement
10: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
9: Of our shared future.
6: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बैंकिंग के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
3: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉ रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
7: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
12: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
13: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
14: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
13: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
14: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
13: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
14: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
13: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
14: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
15: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
16: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
13: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
14: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
14: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
14: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
17: ठक ठक।
18: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
19: अच्छा मिला ही नहीं।
18: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
20: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
18: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
20: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
21: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
22: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
21: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
22: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
2: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
23: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, गंगदयाल यादव पर अब ईडी करेगी कार्रवाई। नदी में डूबी दूसरी बच्ची का भी शव पुलिस ने किया बरामद। पंखे से लटका मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की हुई समीक्षा। और खेत बचाओ अभियान की कर दी गई शुरुआत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में कुख्यात लोगों और भू माफियाओं पर पुलिस लगातार कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में अब गंगदयाल यादव की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गोपालगंज पुलिस के द्वारा संगठित अपराध जैसे भू माफिया, कुट रचना, जालसाजी, मादक पदार्थों की तस्करी, फिरौती, रंगदारी, हत्या और हत्या का प्रयास तथा पशु तस्करी जैसे अन्य अपराधों से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध अब अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में नगर थाना कांड संख्या 369/2026 के अभियुक्त गंगदयाल यादव, जो अमवा नक्षेत्र थाना नगर जिला गोपालगंज के निवासी हैं, इनके विरुद्ध विस्तृत अनुसंधान करते हुए अभियुक्त का गंभीर एवं संगठित आपराधिक इतिहास पुलिस ने पाया है और इस मामले में अब उनके परिजनों के नाम पर भी बड़ी मात्रा में चल रहे अचल एवं चल संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। जांच में अभियुक्त एवं उनके परिजनों के नाम पर लगभग 42 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की चल अचल संपत्तियों को पुलिस ने पाया है। इस दौरान अभियुक्त के द्वारा आय का कोई संतोषजनक एवं वैध स्रोत प्रदर्शित नहीं किया जा सका। उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर उक्त परिसंपत्तियों अपराध से अर्जित धनराशि से निर्मित अथवा अर्जित होने की संभावना पुलिस को मिली है, जिसके बाद अब पुलिस इनके आपराधिक इतिहास, आरोप पत्र, परिसंपत्ति विवरणी और अन्य अभिलेखों को आधार बनाते हुए आर्थिक अपराध इकाई को मामला ट्रांसफर किया है तथा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भी इस मामले को प्रेषित किया गया है। अब गोपालगंज पुलिस द्वारा संगठित अपराध एवं अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। भविष्य में भी ऐसे सभी अपराधी जिनके विरुद्ध अनुसूचित अपराध अथवा संगठित अपराध के मामलों में आरोप पत्र समर्पित किए जा चुके हैं तथा जिन्होंने अपराध के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की है, उनके विरुद्ध भी परिसंपत्तियों की जांच ईडी और ईओयू को दिया जा रहा है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के टंडसपुर गांव स्थित गंडक नदी में 3 बच्चियां डूब गई थी। बताया जा रहा है कि अब दूसरी बच्ची का भी शव आज पुलिस ने बरामद कर लिया। रविवार को एक बच्ची का शव पुलिस ने बरामद किया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी मौके पर पहुंचकर पुलिस को जल्द से जल्द बच्चियों की बरामदगी के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में सोमवार को भी दूसरी बच्ची का शव पुलिस ने बरामद किया है, जिसे पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया। तीसरी बच्ची के शव को बरामद करने के लिए अभी भी एसडीआरएफ की टीम लगातार अभियान चला रही है। सर्च अभियान में कई टीमें काम कर रही हैं। 4 दिन पूर्व नाव पलटने से गंडक नदी में डूबकर 3 बच्चियां लापता हो गई थीं, जिनमें 2 बच्चियों के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इधर मीरगंज थाना क्षेत्र के हरखौली गांव में पंखे से एक शव लटकता हुआ मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल मच गया। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम के सहयोग से शव को पंखे से उतारने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू की गई। बताया जा रहा है कि मृतक 21 वर्षीय अनुज कुमार शिवहर जिला के श्यामपुर बाटहा गाँव का निवासी है और यह मृतक यहाँ BPCL कंपनी में कार्य कर रहा था। अचानक से इसका शव पंखे से लटका हुआ मिला, जिसको लेकर अब पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आखिर यह हत्या है या आत्महत्या, इन सभी बिंदुओं पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। FSL की टीम ने भी घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए हैं, जिसको लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। स्वच्छ गांव और सुरक्षित जलवायु अभियान को लेकर आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा सह उन्मुखीकरण बैठक में आवश्यक निर्णय लिए गए। इसमें उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद एवं सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा जिला स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 1 जून से 5 जून 2026 तक चलने वाले स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की कार्य योजना पर चर्चा की गई और अधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छता, परिसंपत्तियों के बेहतर संचालन एवं अनुरक्षण तथा सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि गांवों में कचरे का स्रोत स्तर पर 4 श्रेणियों गीला, सूखा, सेनेटरी एवं खतरनाक कचरा में पृथककरण सुनिश्चित किया जाए तथा घर घर से नियमित कचरा संग्रहण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। इसके साथ ही पुराने कचरे के ढेरों की पहचान कर उनके निस्तारण की दिशा में भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को बढ़ावा देने, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के 4R सिद्धांत तथा धूलर जल प्रबंधन के 3R सिद्धांतों के प्रति जन जागरूकता फैलाने पर भी विशेष बल दिया गया। साथ ही कचरा से धन की अवधारणा को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, स्वच्छता पर्यवेक्षकों एवं अन्य संबंधित कर्मियों के अभियान के उद्देश्यों और नियमावली के प्रावधानों के संबंध में प्रशिक्षित एवं जागरूक करें। उन्होंने कहा कि अभियान की सफलता के लिए जिन सभी विभागों के बीच समन्वय तथा जन भागीदारी भी अत्यंत आवश्यक। इधर खेत बचाओ अभियान से अब खेती की तस्वीर बदलने और किसानों की तकदीर बदलने को लेकर आवश्यक अभियान की शुरुआत की गई है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में मिट्टी की सेहत को सुधारने, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने तथा किसानों को वैज्ञानिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़ने के उद्देश्य से कृषि भवन मीठापुर से राज्यव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 1 जून से 30 जून तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित किसानों, कृषि वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों के साथ संकल्प लिया कि वे अपने खेत की कम से कम 25% भूमि पर प्राकृतिक खेती अपनाने का प्रयास करेंगे। मंत्री ने कहा कि यह अभियान खेती की तस्वीर और किसानों की तकदीर बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता एवं मानव स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए प्राकृतिक खेती को संतुलित पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने किसानों से मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरकों के उपयोग तथा कम खाद और सही सलाह के सिद्धांत को अपनाने की अपील की। कृषि मंत्री ने कहा कि केवल यूरिया या DAP पर ही निर्भर रहने के बजाय नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग जरूरी है। साथ ही जैव उर्वरक, कम्पोस्ट, गोबर खाद और हरी खाद के प्रयोग से भी मिट्टी की सेहत लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। कृषि मंत्री ने किसानों को धान की सीधी बुआई तकनीक अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि इससे श्रम, समय और सिंचाई जल की भी बचत होती है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के बैरागी टोला के पास तीन मुहानी पर 2 मोटरसाइकिल की टक्कर हुई थी। पिछले दिनों इस टक्कर में 3 लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि इसमें 2 बाइक की टक्कर में जो लोग घायल हुए थे उनमें 2 युवकों की इलाज के दौरान गोरखपुर में मौत हो गई है। इसके बाद अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रविवार को यह घटना हुई थी और स्थानीय अस्पताल से डॉक्टरों ने तीनों को गोरखपुर रेफर किया था, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है और तीसरे की स्थिति गंभीर बताई।

0: गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में गोपालपुर पुलिस ने भी बिशुनपुर गांव में छापेमारी की और हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त विनोद शाह, शंभु शाह और दिनेश शाह को गिरफ्तार किया। अब इन सभी आरोपियों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन कुर्की अभियान भी चल रहा है। इस अभियान के तहत लंबे समय से फरार एवं वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा निर्गत कुर्की वारंट का विधिवत तामिला किया जा रहा है। इसी दौरान कई जगहों पर आज भी कुर्की के आदेश का तामिला किया गया। पुलिस अभियुक्तों के घर पहुँच कर न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इस दौरान स्थानीय लोगों को भी न्यायालय आदेशों एवं विधिक प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी प्रत्येक दिन की भांति आज भी अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुनकर निष्पादित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिले के कोने कोने से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया और उन्होंने भी समस्याओं के निष्पादन के लिए आवश्यक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए निर्देशित किया। प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं। गोपालपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी विनोद शाह पिता स्वर्गीय रामविलास शाह, दूसरा शंभु शाह पिता स्वर्गीय मुनेश्वर शाह एवं दिनेश शाह पिता उदय शाह, ये सभी बिशुनपुर थाना गोपालपुर के निवासी हैं। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाते हुए 108 लीटर देशी शराब को जब्त किया है और 3 चोरी की मोटरसाइकिलें भी पकड़ी गई हैं। बताया जा रहा है कि जादवपुर के रामपुर टेंगराही दियारा क्षेत्र में थानाध्यक्ष ने तमाम दल बल के साथ अभियान चलाया। इसी दौरान सघन तलाशी और जाँच अभियान में लावारिस अवस्था में 108 लीटर देशी शराब एवं 3 मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त किया है। इन सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान कोई भी वैध दस्तावेज अथवा संतोषजनक जानकारी पुलिस को नहीं मिली है, जिसके बाद पुलिस अब मामले में आवश्यक तफ्तीश कर रही है। फिलहाल 3 मोटरसाइकिल और शराब को पुलिस ने जब्त किया है। थावे थाना क्षेत्र के एक डेरवा गांव में मामूली विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि 2 लोगों पर चाकू से हमला किया गया। दोनों गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें घटना के बाद स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दोनों को रेफर किया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मामला थावे थाना क्षेत्र के एक डेरवा गाँव का बताया जा रहा है। इधर भोरे प्रखंड के भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय में अब रसायन शास्त्र, भौतिकी, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी और गणित समेत कई विषयों में स्नातकोत्तर यानी PG पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से क्षेत्र के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अब दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, स्थानीय स्तर पर ही बेहतर शिक्षा मिल सकेगा। इस नए अवसर से स्थानीय लोगों ने बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री, जो जिसके पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार थे, उनके इस महत्वपूर्ण और सराहनीय प्रयास के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। बताया जा रहा है कि निवर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के प्रयास से ही भोरे प्रखंड के भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय में अब इन उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रमों को मंजूरी मिली है, जिसके बाद स्थानीय छात्रों ने पूर्व शिक्षा मंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी तथा उनका आभार व्यक्त किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गंगदयाल यादव पर अब ED करेगी कार्रवाई। नदी में डूबी दूसरी बच्ची का भी शव पुलिस ने किया बरामद। पंखे से लटका मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की हुई समीक्षा और खेत बचाओ अभियान की कर दी गई शुरुआत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज

0: गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस, और तो और वहाँ इम्पोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहाँ हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोर्ट,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 9439456651 या 9797065775।
10: सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
10: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
12: प्रसाद क्लिनिक,
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
14: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
15: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
15: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
15: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।
16: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
17: सुनिए सुनिए सुनिए,
18: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
10: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
18: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
19: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
20: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
19: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
20: अरे हो बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
19: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
20: अरे हो बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
21: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
19: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
22: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमछिम 90.4 FM पे। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो आप पुराने गाने का फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश हम सुना सकें आपको। ऐसा ना हो कि आप नए गाने का फरमाइश कर दें और आप इंतज़ार करते रह जाए और हम पुराने गाने के इंतज़ार में आपकी फरमाइश पूरी ना कर पाए। तो आप जैसे कार्यक्रम चले वैसे गाने की फरमाइश करें, बिल्कुल पूरा करने की प्रयास की जाती है और हम भी प्रयास करेंगे अपने कार्यक्रम में। और अभी मैसेज हमारे पास तो कोई रिसीव नहीं हुए, तो अपने तरफ से एक प्यारे से गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं तब तक जब तक मैसेज नहीं आ जाता है मेरे पास। तो आप सभी इंजॉय करें इस गाने के साथ रेडियो रमझिम 90.4 FM पे।

फ्रीडम जीम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और बैक टू बैक दो गाने सुन रहे थे हम सभी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज करते हैं अंश कुमार गोपालगंज से और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है और गाने का बोल देते हैं चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। डेडिकेट करते हैं अंशु निर्मला और अनुजा। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एम छम 94.4 FM पे।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे और सोशल लेस में फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर, मुझे सॉन्ग सुनना है और सॉन्ग का बोल है बन के पतोहिया सुनिए मोरी आमा। सुनाना चाहती हूँ सबसे पहले आपको एंड शबीना जी, रोशनी जी, सोनी जी, निशा भारती और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी को। और इस मैसेज को करती हैं शिल्पी बिदबर्मा से और आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए। आगे मैसेज में लिखा गया है कि हाय हेलो सर, मैं निर्मला कुमारी जादवपुर से और गाना सुनना है तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज करते हैं अनिल जी छोटपुर से। तो अनिल जी आपकी भी मैसेज हम शामिल करेंगे। अभी मैसेज हमारे पास ठीक से रिसीव नहीं हो पा रही है, थोड़ी सी डिवाइस में दिक्कत आ गई है जिसके कारण फ़िलहाल हम गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी भोजपुरी अंदाज में इस प्यारे से सॉन्ग को।

0: रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है निशा जी के तरफ से, और गाने के फरमाइश करती हैं तारों के शहर में। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और आपके गाने एंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे। गाने तो नए हैं लेकिन मैसेज रिसीव नहीं होने के कारण आपकी मैसेज हमें रिसीव हुई है, तो आपकी गाने हम सुना रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, आगे से गाने की जब भी फरमाइश करिएगा तो आप पुराने गाने का फरमाइश करिएगा, नहीं तो आगे से गाने को प्ले नहीं किया जाएगा। फिलहाल आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो एमजीएम 94 एफएम पे।
1: Property case, and I'll be 76 to the Williams Road address to see if I can.

Fabric.

0: मुझे सॉन्ग सुनना है और सॉन्ग का बोल देती हैं जुदाई मूवी से टाइटल ट्रैक। तो चलिए आपके गाने हम प्ले करेंगे और अंतिम गाने आप ही के रहेंगे। कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे, तो आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ और सुनते रहें रेडियो एम छिम 90.4 FM, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
1: Click on the bell icon to get regular updates from

0: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: Growth and prosperity in the region.
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गो तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
3: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CIPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman. Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement. Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by Mr. Goyal on the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement. The Prime Minister said the article emphasizes that the government's efforts to sign trade agreements with developed countries help improve the lives of every Indian. India and Australia today affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific. During the second edition of India-Australia Defence Ministers Dialogue in New Delhi, both the countries agreed to enhance defence industrial collaboration and futuristic technology research. The meeting was co-chaired by Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles. BJP National President Nitin Naveen today held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details, highlighting discussions on Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, with advancement taking place across every sector. Mr. Patra said, today, the Bharatiya Janata Party and the NDA have been given the opportunity to serve in government in 22 states. The Supreme Court today refused to entertain a plea seeking that the NEET UG 2026 retest be conducted in computer-based test mode instead of the existing pen and paper format. The India Meteorological Department has issued an orange alert for thunder squalls conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर. आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण. रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: जा, तू जतना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खाती हम भागल ना है। आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तब बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: तर
1: अरे करे जा हम बरसिना खाली गर्जे वाला बादल ना होई आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तब बुझ लीह
2: हम संतोष पागल नहीं।

0: कि हम ग्रेड ए पोल नहीं पोल नियर खड़ा हो जाए।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट कारवा मिनी।
2: सारे गामा कारवा इस तोहफे में है।

0: 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो जैना आओ।

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
2: कहो साली जी, कहाँ की तैयारी बाहो?
3: रहो न जीजा, मैंने तैयार ना होकी।

0: बुझे जा बुझने।
1: अच्छा तो चला।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: हम थागर से बोलते हैं, दामाजी प्रसाद
1: जी, क्या हाल है आपका?
2: हमारा हाल ठीक है, अपना हाल बताइए।
1: मेरा भी ठीक है।
2: दिन तक गुमसुम हुआ है
1: जी।
2: आप गाना सुनवाइए।
1: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
2: मैं उठा ले जाऊंगा तुझे डोली में, देखते रह जाएगी तुम्हारी सखिया।
1: अच्छा, फिर ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
2: जितना लोग सुनता सब कोई आई अदालत चौधरी भरे हमारे।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: सलाम
0: मैम नमस्ते, क्या हाल है?
1: मैम, ठीक है? अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है।
1: बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: ठीक है, फिर अपना नाम बताएं
1: साक्षी
0: और आप कहाँ से बोल रही हैं?
1: सिवान जिला पड़ता है लकड़ीदगा।
0: अच्छा, क्या हो रहा है अभी?
1: कुछ नहीं मैम, आपसे बात
0: तो फिर बताइए, क्या फरमाइश है आपकी? कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप?
1: जी मैम बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ ऐसे ही, कोई हिंदी सॉन्ग है
0: जी।
1: जी, वही वाला बता दीजिए।
0: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: रेडियो जो सुनते हैं,
0: ओके
1: और ऋषभा को और नासिम को सब सुनती है, सब मेरी सिस्टर।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंगिंग में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम कॉल उठाने के लिए।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 29 94 911। जी हाँ, 80 29 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: गुड आफ्टरनून मैम।
6: गुड आफ्टरनून, आपका क्या नाम है?
5: मेरा अलिफा नाम है।
6: क्या हाल है?
5: ठीक है, अपना बताइए।
6: मेरा भी ठीक है। कहाँ से हैं आप?
5: मैं सिवान जिले से एक छोटे से गांव से बोल रही हूँ, लकड़ी दरगाह।
6: अच्छा, क्या कर रही हैं?
5: मैं अभी पढ़ाई कर रही थी।
6: किस क्लास में पढ़ती हैं?
5: मैं 10th में।
6: तो क्या फरमाइश है आपकी?
5: यस, आप कैसी हैं मैम?
6: मैं ठीक हूँ। अपना फरमाइश बता दीजिए।
5: मेरा फरमाइश है तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया।
6: आगे भी गाइए थोड़ा सा।
5: मुझको भावे गलिया तेरी गलिया, ऐसे गाना है ना?
6: बहुत अच्छा गा लेती हैं।
5: शुक्रिया मैम।
6: ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
5: मेरी सिस्टर है ना, उन लोगों को और रेडियो रिमझिम सभी दोस्तों को।
6: ठीक है, गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अच्छा, ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: जी मेरी अप्पी है, सबों के गुलाब साहब भी, गुलशन अप्पी, मेरे जीजू है, सबको सुनाना चाहेंगे और रेडियो दुनिया के सभी सदस्य।
0: ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया।

0: पानी के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिन्यू के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। हेलो,
1: बोलिए मैम।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम है सोनम।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: गोपालगंज से।
0: क्या हाल है आपका?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। फिर बताएं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: ये फरमाइश है,

0: बहुत अच्छा गा लेती हैं आप।
1: शुक्रिया मैम, शुक्रिया, कितना अच्छा मैंने तारीफ कर दी।
0: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: मेरे जीजू हैं, राजू जीजू, साहेब जीजू, इमरान जीजू, लड्डू जीजू, और मेरी अप्पी है सबो अप्पी, सबनम अप्पी, फलक अप्पी, गुलशन अप्पी, नासिन अप्पी, साबिन अप्पी, सीफा, वजर, आयशा, सनाया, मेरी अम्मी, अब्बू,
0: बताइए,
1: मेरे भाईजान हैं और मेरी खाला की लड़की है लोग सब।
0: अच्छा ठीक है फिर,
1: और आपको भी सुनाना चाहते हैं।
0: धन्यवाद,
1: आवाज बहुत अच्छा है मैम।
0: थैंक यू, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंग। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: शुक्रिया मैम, शुक्रिया, शुक्रिया।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। क्या नाम है आपका? क्या
1: मेरा नाम आयशा है। ठीक
0: हाल है? कहाँ
1: है, अपना बताइए।
0: से हैं आप?
1: मैं बोल रही हूँ मुजफ्फरपुर से। अभी
0: क्या हो रहा है अभी? तो
1: कुछ नहीं, आपसे बात हो रहा है।
0: क्या फरमाइश है आपकी?
1: मेरी फरमाइश है, बंजारे को घर।
0: अच्छा, ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: मेरे रेडियो रिमझिम के सभी सदस्य को और मेरी मेरे जीजू लोगों को, जैसे कि सफी अहमद जीजू, मैनुद्दीन जीजू, इमरान जीजू, फलक
0: जी
1: अपी, शबनम अपी, चाहत अपी, साबिन अपी, नासिम अपी, आयशा, फजर, सनाया, इनाया, स्माइल, इस्माइल भाईजन को, सनाया, इनाया, सैम, अब्बास,
0: जी
1: हमजा, अना, हमजू, हमजू को भी, हमाद को भी, और नाजिया अपी, और साबिना अपी, नासरीन अपी, गुलशन अपी।
0: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: रेडियो रिमझिम, नमस्कार।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में, कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: हमको चांद का पार गाना सुनना है।
3: जी, गाना आपको सुनाया जाएगा, पहले अपना नाम बता दें।
2: संजय शाह।
3: और
2: ग्राम फुली डुमर, जिला बांका, बिहार से बोल रहे हैं।
3: कैसे हैं आप?
2: ठीक है।
3: क्या हो रहा है अभी?
2: अभी तो यही दुकान पर है।
3: अच्छा,
2: दुकाने चलाते हैं।
3: फिर बताइए
2: आपका जो है सोच, सुनते हैं हम बराबर।
3: अच्छा जी,
2: ट्राई करते करते तब अभी लगा।
3: लगता है थोड़ा वक्त,
2: हाँ
3: लाते रहते हैं ना इसीलिए।
2: हाँ, चांद के पार चलो।
3: जी, और ये गाना किसको सुनाना चाहते हैं?
2: आपको और पूरे श्रोतागण को।
3: बिल्कुल, गाना सुना दिया जाएगा। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, महर एमपी से।
1: नमस्कार, क्या हाल है?
0: कुछ नहीं मैम, बस बैठे थे मैम आपका शो का इंतजार करते हुए मैम, तो शो तो स्टार्ट हो गया मैम, तो आज एक फरमाइश है, फिल्म है कुछ कुछ होता है और गाने के बोल है तुझे याद न मेरी आई।
1: अच्छा।
0: यही गाना सुनना चाहते हैं और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
1: जी ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके मैम, धन्यवाद मैम, थैंक यू।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: जी मैम नमस्ते, सुमित कुमार बात कर रहा हूँ मैम, नांग जामनगर गुजरात।
6: जी क्या हाल है आपका?
5: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे रेडियो रिमझिम सुनते हुए मैम।
6: जी फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
5: जी आज सुनवा दीजिएगा फिल्म दिल वाले का, जीता था जिसके लिए, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं। आप कौन सा मैम बात कर रहे हैं?
6: भारती बोल रही हूँ।
5: जी मैम
6: ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: हेलो मैम, नमस्कार। गुड
0: नमस्कार,
1: गुड आफ्टरनून,
0: गुड आफ्टरनून।
1: कैसा है?
0: ठीक है, आप अपना बताइए।
1: मेरा नाम श्री भगवान सिंह है।
0: बोलिए।
1: मैं दोहा कटर से बोल रहा हूँ।
0: जी,
1: मेरा आज वेडिंग एनिवर्सरी है, तो एक गाना सुना है, तो आपने पसंद सा अच्छा गाना सुना दिए।
0: अभी बता दें आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
1: हम गाना सुनना चाहेंगे वेडिंग एनिवर्सरी पर, कोई अच्छा गाना जैसे शादी मुबारक हो।
0: जी,
1: वह गाना भी तैयार है।
0: ओके, गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: हाँ, हमारे सुनने वाले हैं हमारे पास काफी प्रसाद, नागराज, चंदन भाई, दिनेश कुमार, सचिन कुमार, कमल सिंह, शंकु अमीषा और पूरे जो रिम के दर्शक हैं उन सबके लिए। ओके
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिम में कॉल करने के लिए। धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: यो गाना सुनने के बाद थानेदार फिल्म के गाना सुनवा दे ना।
5: जी,
6: हमारा नाम तो महेश शर्मा था, कालीकम से बोला था।
5: अच्छा,
6: तो और सब कुशल मंगल कही?
5: सब बढ़िया बा, अपन बताएं।
6: ठीक है बा, हम तो पहाड़ इलाका में रह, गर्मी कम बा।
5: नहीं जा तो बहुत ज्यादा गर्मी बा।
6: हाँ, बिहार में तो गर्मी रहे। हमने की छह महीना पर जा

0: गया थी, पढ़ ही ना सके, कितना भी फैन चले पंखा चले ना, तभी भी मच्छर मारने के नाम ना इतना गर्मी कॉलेज हमने के यहाँ पर बन तो एक कमर के जा रहा था।
1: अच्छा ये तो मतलब भयंकर अभी गर्मी पड़ता है।
0: हाँ, हाँ, 25-26 साल से रहा था नहीं वहाँ पर, वहाँ पर मन ना
1: बढ़िया पर ठंडी में पानी अच्छा।
0: हाँ हाँ गाँव में जाने से मन नहीं, इतना गर्मी से परेशान होकर जाए। हाँ, 2-4 दिन रह ले भाग जाए। हमें तो समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के बगल में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ा है। तब तो सुना दे मैडम प्रणाम।
1: ठीक बा, गाना प्ले करता नहीं सुनत रहे सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी मैडम।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: सत्या
0: क्या नाम है आपका?
1: बूटा सिंह माणपणी, नत्रोड़ तलमंडी साबो, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब से। हाँ
0: ओके, क्या हाल है
1: जी,
0: आपका?
1: बहुत बढ़िया जी। तुम दसो ठीक हो? मैंने आज गाना सुना दो जी, संगम फिल्म का गाना है जी, डबली वाले डबली।
0: जी, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: अपने दोस्त है महेंद्र भट्टी मंडी कलां तो, जगदीश राय गर्ग मानसा तो, जगजीत मट्टू मौड़ कलां तो, मलकीत घड़ी सार गोनिया ने तो, सतीश मगला।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो,
7: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के
6: कार्यक्रम
7: में।
6: नमस्कार।
7: नमस्ते
6: जी, क्या हाल चल रहा है बोलिए।
7: मेरा हाल बढ़िया है, आप अपना बताएं।
6: जी बहुत अच्छा है हमारा। और हर्ष भाई,
7: क्या नाम है आपका?
6: तो कुमार, कोटवा से।
7: अच्छा जी, क्या हो रहा है अभी?
6: अभी क्या हो रहा है तो मौसम आपको पता है, जब कोई बाहर निकलने देता है।
7: जी, मौसम तो अभी बहुत गर्म है,
6: बहुत बहुत ज्यादा ऐसे गर्म पड़ रहा है।
7: जी,
6: बैठे हैं घर में ऐसे पर। और सब सुनाइए।
7: हाँ, सब बढ़िया है।
6: अच्छा ठीक है, हमको गाना सुना दीजिएगा। आप वही गाना जो उस दिन बोले थे, या को पानी पिलाए अच्छे। जी,
7: यही गाना सुनना है आपको?
6: हाँ हाँ, यही सुनेगा।
7: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कदर करना हो वक्त रहते ही कर लो, स्थिति की कदर करना हो वक्त रहते ही कर लो, सूखे पेड़ में पानी डालने से हरा की उम्मीद रखना बेकार है। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैं कमरा मसीद विलेज पकड़ी सुल्तान।
1: अच्छा, क्या हाल है आपका?
0: मेरा तो हाल ठीक है, अपना सुनाइए आप कैसी?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: नाश्ता हो गया आपका?
1: जी हाँ, मेरा हो गया। और आपका?
0: हाँ मेरा भी हो गया। मुझे भी गर्मी का मौसम ज्यादा है। गर्मी?
1: जी गर्मी तो बहुत ज्यादा है और गर्मी तो बढ़ते जा रही है।
0: हाँ अभी तो और बढ़ेगा।
1: जी
0: तो वही चल रहा है, जून जुलाई अगस्त पूरा गर्मी, इसमें तो बच के रहना ही ठीक है।
1: जी गर्मी में बच के रहिए।
0: अब धूप में जाकर घूमना अच्छा नहीं है, नींबू पानी पीना चाहिए इसमें ज्यादा। तो आपका नाम क्या हुआ?
1: मेरा नाम भारती है।
0: अच्छा हाँ हाँ हाँ चला भाई, कोई भारती नाम के आई है।
1: हाँ
0: और सब बढ़िया है?
1: जी मेरा बढ़िया है। फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
0: फिल्म का नाम है कुली नंबर वन।
1: जी
0: फिल्म का नाम है कुली नंबर वन। सॉन्ग है जेठ जेठ दुपहरी में पांव जले।
1: जी
0: यही सॉन्ग में है, डेडिकेट है सबसे पहले आपको।
1: जी
0: और आयशा अख्तरी, अहमद अली, शाहजहाँ, सबीना, सब्बा सिद्दीकी, समीर आलम, गुलाम हुसैन, अजाद अंसारी सऊदी, अजीर आलम अंसारी, रानी हरखुआ, भास्कर बरजू, मुखल सोनी, रानी हरखुआ, सबनम सिद्दीकी और जितने लोग सुन रहे हैं सबको सुन दीजिए। इंदर भाई, उमा शंकर भाई, हेना हाजरा, सबको सुनाइएगा। नमस्कार।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंगम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो,
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
4: जी नमस्ते, बालवीर सुंदर पुर।
5: जी नमस्कार, क्या हो रहा है फिर?
4: अभी तक कुछ ही नहीं हो रहा है, इतना गर्मी है ना।
5: गर्मी तो बढ़ते जा रही है, अभी गर्मी और बढ़ेगी।
4: जी जी,
5: फिर गर्मी में बच के रहे, ख्याल रखे अपना।
4: जी जी, अभी पेड़ के नीचे है।
5: अच्छा, फिर बताएं क्या गाना सुनना चाहते हैं?
4: फरमाइश सही है, जीता का जिसके लिए दिलवाले फिल्म का।
5: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहेंगे?
4: अमन बबलो।
5: अच्छा ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: नमस्ते।
5: नमस्कार।

0: हेलो। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। थोड़ा तेज बोल सकते हैं, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है
1: गाना सुनना है। हिंदी
0: जी। बताएं कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना कोई भी सुनाती
0: ये फरमाइश तो है, तो आप खुद की पसंद से बता दें।
1: कोई भी गाना, दिल जारे मूवी के गाना।
0: अच्छा, और कौन सा सॉन्ग इसका?
1: हेलो, कोई भी गाना सुनाती
0: जी। फिर गाना और ये किसको सुनाना चाहेंगे आप? अच्छा, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

आरजू झूठ है, कहानी है। आरजू का फरेब खाना नहीं, खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: नीरज शर्मा जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराष्ट्री महाराज जी, मैं राम कथा वाचक व फरीदाबाद से विधायक हूं। मेरे पास किसी समस्या के लिए एक पक्ष आता है और मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है, तो क्या दूसरे पक्ष के साथ अन्याय है?
1: ये आपको देखना पड़ेगा कि जिस पक्ष का आप संग कर रहे हैं वो धर्मयुक्त है, वो हमारे भागवतिक संविधान से ठीक है, वो हमारे राजकीय संविधान से ठीक है। अगर ठीक है तो हम पक्ष लेते हैं, इसको बता देते हैं कि आप हमारे पास आए हो, हम उत्तम सलाह देंगे, पहले आप अपने आचरणों को सुधारिए, फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आचरण हमारे राजकीय विधान के प्रतिकूल है या शास्त्रीय विधान के प्रतिकूल है तो हम आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। अगर अधर्म का पक्ष देंगे तो फिर आपका सहयोग नहीं हुआ, अधर्म में सम्मिलित हो रहे, आप हमारे पास आए हो। अगर आप हमें लगता है कि जिस बात का आप सहयोग मांग रहे हो वो शास्त्र सम्मत है और हमारे राज्य की विधान कानून के अंतर्गत है, क्योंकि आपने एक पद का नाम लिया तो राज्य की विधान से सम्मानित पद है, जितने भी लोग आपकी सेवा में आते हैं उनमें ऐसा आपका व्यवहार है जैसे एक घर का बड़ा बुजुर्ग अपने बच्चों से प्यार करता है, वैसे जितना आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र का धर्मी अधर्मी पापी उत्तम अधम सब आपके प्यार और दुलार और शासन तीनों के अधिकारी हैं। अगर वो अधर्म युक्त आचरण करता है तो जैसे अपना बच्चा गलत करता है तो दो चार थप्पड़ लगाते हैं, ऐसे ही भाव से उस पर शासन करेंगे। स्वार्थ, किसी भी तरह का प्रलोभन, किसी भी तरह का सांसारिक संबंध दबाव, ये अगर है तो फिर वो ठीक निर्णय नहीं कर पाएगा। ठीक निर्णय तभी कर सकता है जब कानून और भागवतिक विधान दोनों का परिचय प्राप्त हो और सामने वाला जो सहयोग मांगने आया है वो अधर्म से हटकर धर्म में चलने वाला है, फिर चाहे हमारे प्राण चले जाएं उसका सहयोग करेंगे और आगे उसको बढ़ाएंगे। और यदि अधर्म युक्त है तो वो या तो गलती स्वीकार करे और दंड भोगे, और अगर ऐसा लगता है कि एक बार क्षमा करने से यह अधर्माचरण छोड़ देगा और वास्तविक छोड़ देगा, इसका अधर्माचरण करने का स्वभाव नहीं लेकिन भूल हो गई, तो सहयोग करना चाहिए, उसमें बहुत विचार करना होगा। नहीं तो कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन तीनों को बराबर भाग मिलता है, चाहे वो शुभ का हो या अशुभ का हो। जैसे कभी वृंदावन जाइए आप, एक बार बिहारी जी के दर्शन कीजिए, सत्संग सुनिए, देखो प्रयास करेंगे। दूसरा प्रयास नहीं, बड़े भाग्य की बात, सुनो अगर तुम्हारे पैसा नहीं तो हम व्यवस्था कर देते हैं, एक दिन का काम हम देख लेंगे, तुम जाओ तो वृंदावन। और वो वृंदावन आया तो वो आया, परिक्रमा किया, दर्शन किया, सत्संग सुना, उसको जो लाभ मिलेगा वो प्रेरणा देने वाले अनुमोदन करने वाले को बराबर मिलेगा। इसीलिए शास्त्रीय विधान है, अगर आप अधर्म का साथ देते हैं तो आपके ऊपर अधर्म का ही दंड मिलेगा आपको, कोई भी हो, कोई भी हो। और अगर आप धर्म का साथ देते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म आपकी रक्षा कर लेगा। अगर कोई आपके प्रतिकूल होना चाहेगा तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। शास्त्रीय विधान अध्यात्म सलाह ऐसी है। आपको कोई संशय?
2: संशय

0: क्या होता है
1: कि दूसरा पक्ष तो कभी कभी नहीं आ पाता, और जो व्यक्ति आता है वो बार बार एक ही प्रेशर देता है कि भाई साहब हम आपके साथ थे, आज आप हमसे अच्छे बुरे की परिभाषा की
2: आपको बार बार साथ देना कि मैं भारत का हूं, भारत का हमारा एक कानून है, मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे साथ है, हम कभी वो नहीं कर सकते जो भगवान और कानून के विधान के विपरीत हो, तुम साथ देना अन्यथा मत देना। ये जीवन कितने दिन का है, अंततो गत्वा विधान में भी आप भी चल रहे हो, अगर राजकीय विधान बिगड़ गया तो आपको भी दंड मिलेगा, और अगर भागवतिक विधान बिगड़ गया तो ये शरीर और ये साम्राज्य सब छूट जाएगा, एक ना एक दिन छूटेगा ना, तो उसका परिणाम क्या होगा। तो हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ कानून का विधान है, इन दोनों को तुम हमारा साथ दो या ना दो, अगर तुम अधर्म से चलते हो हमारा साथ मत देना, हम प्रभु के भरोसे हैं, देख लेंगे। वो आदमी अगर थोड़ी भी मनुष्यता है तो समझेगा कि तुम चीज क्या हो, और अगर तुम किसी पहला एक एक शब्द आप अगर श्रवण करोगे तो प्रश्न नहीं रह जाएगा। किसी प्रलोभन में या किसी संबंध के दबाव में जो निर्णय किया जाता है वो धर्म में नहीं होता, धर्म किसी दबाव में निर्णय नहीं होता, बस हमारे जो अध्यात्म का निर्णय है वो ये है, इसीलिए प्राय आप लोगों से चूक हो जाती है। अगर ये अधर्मी आदमी है, इसको हमने साथ नहीं दिया तो हमारे ऊपर क्षति कर सकता है, हमारे परिवार के ऊपर क्षति कर सकता है, हमारे पद में भी बाधा आ सकती है। तो ये पद कितने दिन रहेगा, ये पद कितने दिन रहेगा, ये शरीर कितने, यह अविनाशी है क्या, वो पद अविनाशी है क्या, अगर सही से चलोगे तो इस पद का प्रयोग करते हुए अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को प्रसन्न कर लोगे, क्योंकि चाहे 10 लोगों की सेवा हो चाहे 1000 लोगों की सेवा हो तो प्रभु की ही रही ना, प्रभु को आप अपने साथ नहीं देख पाएंगे। आप एक शब्द और भी बोले कि आप भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं, तो क्या आप ये नहीं अनुभव कर पा रहे हैं कि भगवान आपके साथ हैं, क्या आप जानते हैं इनसे आप जीते हो, आप भगवान ने आपको पद दिया है इसलिए सबकी मति फेर कर आपको जिताएंगे, वो ईश्वर है, सबके ऊपर शासन है। आप धर्म में चलते हो ना, वो जा रहा है डालने दूसरी जगह, लेकिन रास्ते में उसका दिमाग बदल गया, ईमानदार और सच्चा आदमी तो यही है यार, हम गलत थे इसलिए साथ नहीं दिया, लेकिन सच्चा आदमी यदि हमारे प्रदेश में ऐसा रहेगा ना कि अगर ये रहा वो जाके तुम्हारे में डालेगा, है विरोधी वृत्ति लेकिन डालेगा, क्योंकि धर्म जबरदस्ती उसको अनुकूल बना लेता है। इसलिए हमारी तो जो यही भावना रहेगी, हम इस विषय में कभी सलाह नहीं दे सकते, वो बात नहीं बनेगी, वो ठीक नहीं, वो आपके परिवार के लिए भी हानिकारक होगा और परमार्थ के लिए भी हानिकारक होगा, पक्की बात है जी।
1: वसंत में गुरुजी करता तो मैं यही था, डर के करता था, आज के बाद ये निर्णय और स्ट्रांग हो जाएगा
2: जी, बिल्कुल। और अगर निर्णय स्ट्रांग है तो हमारी एक बात याद रखना, वो अनंत सामर्थ्यशाली भगवान तुम्हारे साथ, इस बात का अनुभव भी करो, है देखते हैं कौन क्या बिगाड़ लेता है, वह है सब जगह है, तो जहां मैं हूं वहां भी है, सबका है तो मेरा भी है, सब में है तो मेरे में भी है, सर्व सामर्थ्यशाली है तो फिर क्या डरना है, सर्वत्र सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जिसका आश्रय लिया है सिद्ध पे, ऐसे कोई डायलॉग थोड़ी है, केवल जिंदगी है, जिंदगी मृत्यु क्या चीज होती है देखा है, और कृपा क्या चीज होती है ये देखा है, और दोनों के बीच का युद्ध क्या होता है वो भी देख रहे हैं। इसलिए सत्य में चलो यार, चाहे 2 दिन जियो क्या मतलब, 1000 दिन जी के क्या करेंगे, पापाचरण करते हुए 1000 दिन जिए तो क्या फायदा, एक श्वास राधा बोलो सत्य में चले जाओ तो पहुंच जाओगे धाम, पहुंच जाओगे प्रभु के धाम। देखो त्रिभुवन का सबसे बड़ा जो देवलोक तक पद माना गया उसके ऊपर भी प्रजापति हैं और फिर परमेश्वरी पद है देवराज इंद्र पद। महाराज नहुष ने यज्ञ और पुण्य प्रताप से योग्यता प्राप्त की थी देवराज इंद्र पद की, देवराज इंद्र पद। अवसर आया, देवताओं ने प्रार्थना की तो उनका प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अग्निदेव को आज्ञा करूं, वायुदेव को आज्ञा करूं, प्रभु मैं डरता हूं इस बात से। बोले नहीं, मैं सब देवता मिलकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जो तुम्हारे सामने होगा उसकी आदि शक्ति तुम में आ जाएगी, और तुम्हारा पुण्य तो है तो तुम सब पे शासन कर सकते हो। पहले ऐसे हुए, अब जब देवराज इंद्र पद पे बैठे तो भूल गए वो वाली बात, नहीं एक जन साधारण आदमी के दरवाजे पे भी जान के नहीं कहा जाता, भैया मैं आपका ही सेवक हूं, और जब गद्दी पे बैठे

0: वो छोटे छोटे पद हैं, अगर हमसे बिगड़ गए देवराज इंद्र पद और सीधे आपका पोस्ट हुआ अजगर योनि में, इसलिए बहुत सावधान, ये पद नहीं रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन धर्म रहेगा, सत्य रहेगा, भगवान का नाम रहेगा, हिम्मत रखो। जिस दिन मरना है उसी दिन मरना है, जिस दिन जो होना है उसी दिन होना है, उसके लिए चिंता क्या करना। हरि शरणम हमारी तो एक ही बात समझ में आती, तेरे किए सब होगा, तू नहीं चाहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं निर्भय हूं, निश्चिंत हूं, निशोक हूं। केवल वाणी की बात नहीं होती, ये छाती की बात होती है। हाँ, अनुभव करो, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, हिरण्यकश्यप जैसा दुर्दांत त्रिभुवनपति, अब कहां तेरा हरि, कहां तेरा हरि, बांध दिया खंभे, कहां तेरा हरि, इस खंभे में भी है, तेरे में भी है, जिस तलवार से मारना चाहता है इसमें भी है। अच्छा, इस खंभे में हरि, घूसे का प्रहार, महान बलशाली, ऐसा भगवान का रूप ना कहीं पुराणों में लिखा था, ना वेदों में लिखा था, ना किसी ने, किसी महात्मा ने ऐसी भावना भी नहीं की थी, एक अलौकिक रूप, और ऐसी दहाड़ मारते हुए निकले कि तलवार ढाल गिर गई, मूर्छित होके गिर गया। भगवान का अपने 5 वर्ष के भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने वो अद्भुत रूप, कोई देवता ऐसा नहीं था जो कांप न रहा हो भगवान के रूप को देख के, और इतने सुकुमार, इतने सुंदर भगवान, इतने आवेश में ऐसा नरसिंह रूप, वही भगवान हमारे भी है, वही भगवान आपके भी है, डरना क्या है, जो होगा हमारे कर्म का फल अगर भगवान भगवाना चाहते तो वो चाहे जैसे चलो भोगना पड़ेगा, फिर डरना क्या है, बहादुर की बात चलो धर्म में। तो हमें लगता है यहां भी मंगल होगा और वहां भी मंगल होगा, अधर्माचरण न यहां सुख देता है न परलोक में सुख देता है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.